0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Chandni

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

तेनू तकिया ते साया तेरे नालों वध सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदलां नूं ए मौसम कोई नवा आया मैं

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Gio
1: Windows. Awesome. Radio Olive par aane wala gaana, cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
0: Awesome.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133। देखो

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:08 हो रहे हैं और यहाँ पे रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम पे मैं पहुंच चुका हूं आपका मेजबान सुदेश। और देखिए भाई, 4 घंटे एक साथ बैठेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो वक्त बिताने का हमारा सिलसिला यहाँ पे शुरू होने वाला है। अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए अपने आज के इंटेंशन के बारे में, इरादा क्या है बताइए, साथ ही साथ अपने गुड मॉर्निंग कोड्स मैसेजेस मुझे भेजिए 3311063 पर। तो फिर इंतजार किस बात का जानी, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए और फिर से याद दिला रहे हैं हम भाव मुशाए, मॉर्निंग सिर्फ गुड नहीं बिंदास होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, आपके हवाले ही है और क्या। बट एक और बहुत क्यूट सा गाना जो है थोड़ी देर में आपके रेडियो सेट में प्ले होने वाला है।
1: तेनू एक प्यार कर दी, तेनू चढ़ के चुबारे तक दी।
0: मगर फिलहाल यहाँ पे शो की शुरुआत करेंगे हम फहीम अब्दुल्ला और चिन्मय की आवाज में। तो चलिए डकॉइट मूवी का गाना सुनते हैं फहीम अब्दुल्ला और चिन्मय की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Hi, Radio Olive.
2: Radio Olive.
1: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
2: Shahrukh Khan. I'm in number
3: one. Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में बिंदास
5: मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है भाई थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। आसमा का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि इट्स नॉट सेल्फिश टू एंजॉय लाइफ, व्हाट सेल्फिश इज टू इंसिस्ट ऑन बीइंग नेगेटिव डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू यू। गुड मॉर्निंग करके, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया बात एक्चुअली कही है यहाँ पे। और जब भी हमारे पास पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, वहाँ पे भी अगर हम नेगेटिव होने की बात करेंगे या फिर ये डाउट मन में रखेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आसमा। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है और उन्होंने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू बी हैप्पी, इट इज़ टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट, मेक डिफरेंस दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड वेल करके। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है हमारे पास और उन्होंने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, गुड मॉर्निंग, मे गॉड स्माइल ऑन यू एंड टेक गुड केयर ऑफ यू टुडे, विशिंग यू अ ब्लेस्ड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफ़ी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। और अबरार भाई का मैसेज आया है, उसमें लिखा है, मॉर्निंग, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यूज एवरी सेकेंड, फील एवरी मोमेंट, बी हैप्पी, Keep smiling and have a good day करके। Thank you so much जी, thank you so much, आपको भी काफी बढ़िया दिन जो है हम wish करते हैं। और भी ऐसे अपने messages जो है आप भेज सकते हैं, अगर आपने अभी भी tune in किया है तो जानी इंतजार किस बात का है, 3311063 ये है हमारा number, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और अपने मैसेजेस के साथ साथ बताइए क्या क्या है आज का इरादा, आज की इंटेंशंस क्या क्या है। थोड़ी देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में, ये परखने के लिए, जानने के लिए कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सबसे कितने तेज है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: कुछ ना कहो मूवी का टाइटल ट्रैक हमने सुना साधना सरगम और शान की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में आज का सवाल हम जो है पूछेंगे

ये बहुत ही सिंपल सवाल है और साथ ही साथ थोड़ा ज्योग्राफिकल सवाल है. और सवाल ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट ओवरऑल सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है. इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये आपको बताना है. मैं एक और क्लू दे देता हूँ कि ये जो है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है. फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये आपको बताना है. और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी. और प्रूफ कर सकते हैं कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने ज़्यादा तेज हैं. तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और बताइए मुझे सवाल का जवाब क्या है. फिलहाल यहाँ पे मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आरक्षण मूवी का गाना हम सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूँ आरजे कशिश, और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो।
5: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
6: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
4: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
7: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द, आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list, and watch out, the label itself is very tricky. You read on it sugar free. Does it mean sugar free 100%? No, it's not the case.
4: So what do you think about this activity?
7: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
4: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
8: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
10: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई हमारे पास जो है थोड़े मैसेजेस आए हैं और देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या मैसेज आया है। मुझे राहुल जी का मैसेज आया है, राहुल जी ने मैसेज भेजा है चिलिका लेक करके, उसके साथ साथ मुझे वीएसआर मूर्ति जी का मैसेज आया है चिलिका लेक करके, सरिता जी का मैसेज आया है, सरिता जी ने जो है एक ऑडियो भेजा है। सरिता जी आपका ऑडियो घूम ही रहा है, लोड हो रहा है, वो प्ले नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी देर में फिर से ट्राई करता हूँ, बट आई होप आपने सही आंसर भेजा होगा। उसके साथ साथ मुझे अभी संधू जी का मैसेज आया है, संधू जी ने मैसेज भेजा है, लिखा है गुड मॉर्निंग कतर हरपाल संधू फ्रॉम दुकान करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग जो है हम विश करते हैं। मेहरुनिसा जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव, गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे इससे याद आया, गर्मी के टाइम पे जब इंडिया में थे हम, स्पेशली स्कूल के टाइम पे, तो सुबह सुबह 5 बजे उठना होता था। अब यूजुअली मुझे स्कूल जाने के लिए भी 5 बजे ही उठना होता था, बट वेकेशन के टाइम पे 5 बजे उठना मतलब कुछ तो खास है उस दिन। उस दिन क्या खास होता था, उस दिन हम सब दोस्त लोग मिलके हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क था जिसे स्मृति वन बुलाते हैं, वहाँ जाते थे, ठीक है, वहाँ बड़ा सा ग्राउंड सा हमें मिलता था, एकदम मज़े से खेलते थे हम, ठीक है, खुद को धोनी समझ के जाते थे, मगर अच्छा बॉलर आ गया तो फिर हम जल्दी वापस आ जाते थे। बढ़िया, ये सब खेल करने के बाद 5 बजे उठते थे, 5:30 बजे खेलने जाते थे, तो लगा लो 6 बजे से लेके 10 बजे तक हम खेलते रहते थे, 10 बजे वापस आते थे, भरी धूप, दिल्ली की भरी धूप में हम ऐसे वापस आते हैं, घर में मम्मी वहाँ पे बना के रखती है एकदम ठंडा ठंडा रूह अफ्सा या फिर नींबू पानी, और वो रूह अफ्सा या फिर नींबू पानी जब हम पीते हैं ऐसे गटकते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई जान में वापस जान आ गई। वो चीज़ें मुझे याद आ गई ये मैसेज पढ़ के, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत हो रही है, और जो भी लोग अभी बाहर हैं स्टे हाइड्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप सभी ने यहाँ पे सही जवाब दिया तो आपके लिए बजेंगी तालियां, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इंडिया का जो लार्जेस्ट ओवरऑल सॉल्ट वाटर लेक है वो चिलिका लेक है, मगर यहीं पर अगर हम बात करेंगे इनलैंड लेक की, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, सॉल्ट लेक है, वो है सांभर सॉल्ट लेक जो राजस्थान में है। तो ये भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर किसी ने भी अपने आप को कन्फ्यूज नहीं किया, एकदम सही तरीके से यहाँ पे जवाब दिया, तो इसी खुशी में फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour।

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं। और अभी का टेम्परेचर जो है ये हमें देखने को मिल रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। और हवा यहाँ पे बह रही है 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। देखते हैं हवा उड़ाएगी कि नहीं उड़ाएगी, मगर पिघला जरूर सकती है इस गर्मी में। बट हम देखिए गर्म हवा से ही पिघल सकते हैं, ऐसे नहीं पिघलेंगे, क्योंकि काफी सख्त आदमी है जाकिर भाई के हम शिष्य हैं, बट जाकिर भाई को ये नहीं पता। बट हाँ, जरा आप भी मुझे बताइए बाहर का माहौल कैसा है आपके लिए, कोई अच्छे नज़ारे अगर दिख रहे हैं तो फोटो खींचिए, भेजिए हमें 3311063 पर, और दिखाइए बाहर का नज़ारा, क्योंकि मैं तो अंदर बैठा हूँ, मुझे बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी आँखें बनिए, ज़रा मुझे बाहर कैसा है सब कुछ दिखाइए। और यही बात बताते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं, गिनी विद सनी मूवी का गाना प्ले करते हैं अल्तमश फरीदी की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग,
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे जो है मुझे आसमान ने एक वीडियो नोट भेजा है, बट आसमान ने जो वीडियो भेजा है वो अनसपोर्टेड मैसेज टाइप में आया है, तो आसमान एक और बार भेज दो यार। सॉरी, रियली सॉरी। उसके साथ साथ मैं एक और मैसेज पढ़ना चाहूँगा। मुझे राहुल ने मैसेज भेजा है, राहुल ने बोला, सॉरी फ्रॉम माई डॉटर, दी आंसर वॉज गिवन टू मी बाई माई डॉटर वाइल ऑन वे टू स्कूल, शी एक्सपेक्टेड हर नेम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नाम देखा नहीं था, आपने नाम लिखा नहीं था, बट कोई बात नहीं राहुल, थैंक यू सो मच ये मैसेज मुझे भेजने के लिए। आप मुझे ज़रा अपने बेटी का नाम भेज दीजिए, मैं एक ऑडियो नोट आपको भेज दूंगा मेरा रिगार्ड्स कन्वे करते हुए। उसके साथ साथ मुझे जो है एक और मैसेज आया है दीपक जी का। दीपक जी ने मुझे एक मैसेज भेजा है, एक फ़ोटो भेजा है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो यहाँ पे, यार मुझे लगता है मतार कदीम के आसपास का एरिया है ये, और जी हाँ मतलब मतार कदीम के पास जो एक पार्क है वहाँ पे है ये, वहाँ का फ़ोटो है, और ये फ़ोटो मुझे भेजा है अफसल भाई ने। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, मतलब यहाँ बैठे बैठे आपने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यही बात करते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं, और थोड़ी देर में जब हम गानों के उस पार वापस आएंगे तो हेल्थ रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करेंगे। तैयार हो जाइए, स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रान। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर मनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम रान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मैं हूँ आरजे कशिश और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो?
3: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
4: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
2: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
5: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द। आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list and watch out. The label itself is very tricky. You read on it, sugar-free. Does it mean sugar-free 100%? No, it's not the case.
2: So what do you think about this activity?
5: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. Yeah. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
2: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
6: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
1: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:30 हो रहे हैं और चलिए यहां पे शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: तो फिट है तो हिट है। में आज हम बात करेंगे क्रेविंग्स के बारे में। ठीक है, हमने कई बार इंस्टाग्राम में पोस्ट देखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा कि अगर कुछ क्रेविंग तुम्हें है तो मतलब कोई ना कोई चीज़ें तुम्हें डेफिशिएंसी में है। बट क्या सही में ऐसा है? क्या मिथ ये है कि क्रेविंग्स का मतलब हमेशा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होता है? बट रियलिटी इससे कुछ अलग है। फैक्ट ये कहता है कि बहुत लोग मानते हैं कि अगर भाई चॉकलेट, चिप्स या स्वीट्स की क्रेविंग तुम्हें होती है तो बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है। लेकिन रिसर्च तो ये दिखाती है कि मोस्ट फूड क्रेविंग जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से नहीं बल्कि हैबिट्स, इमोशंस और ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से लिंक्ड होती है। क्रेविंग्स को ट्रिगर करने वाले कॉमन फैक्टर्स क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान ब्रेन जो है क्विक एनर्जी फूड्स जो चाहता है, चाहे वो शुगरी हो या फैटी फूड्स हो, उनकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। पुअर स्लीप, कम नींद जो है क्रेविंग्स और एपेटाइट दोनों को इंक्रीज कर सकती है। हैबिट्स, आदतें, अगर आप रोज शाम को चाय के साथ

किटकैट खाते हो तो उसी टाइम क्रेविंग ऑटोमेटिकली आ सकती है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे चाय पीने में। इमोशनल एसोसिएशंस भी होते हैं कुछ कुछ फूड्स जो है कंफर्ट या रिवॉर्ड से लिंक्ड होते हैं, इसलिए मूड के हिसाब से क्रेविंग्स भी आ सकती हैं। और कुछ रेयर केसेस में, ऐसा नहीं कि भाई डेफिशिएंसी है ही नहीं, ठीक है, कुछ रेयर केसेस में डेफिशिएंसीज भी रोल प्ले कर सकती है। एग्जांपल, आयरन डेफिशिएंसी कभी कभी अनयूजुअल क्रेविंग्स देती है, जैसे कि आइस च्यू करना, ठीक है। लेकिन चॉकलेट या जंक फूड की क्रेविंग का मतलब यूजुअली मैग्नीशियम या किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होती। शॉर्ट में यही है बात कि भाई क्रेविंग्स अक्सर बॉडी के न्यूट्रिएंट डिमांड से ज्यादा ब्रेन के हैबिट और रिवॉर्ड सिग्नल का रिजल्ट होता है। तो इस चीज को समझिए और उसके हिसाब से जो है अपने क्रेविंग को कंट्रोल करने के मेजर्स लीजिए। फिलहाल यहाँ पे एक्शन जैक्सन मूवी का गाना सुनते हैं हिमेश की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 riyal instead of 849 riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Experience more with Ooredoo.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
1: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

निहाल और अनखोंस की आवाज में हमने सुना एक बहुत ही प्यारा गाना मातृभूमि मूवी का, तुम चांद देख लेना तुम्हें हम नजर आएंगे। बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं भाई। हाँ सही है, मगर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:48 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारी खबर जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक लोकल अपडेट हमारे हाथ में लगा है और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखिए, हमें कुछ खबर मिली है कि कतर सेंट्रल बैंक ने एक अपडेट जारी किया है। कतर सेंट्रल बैंक ने 5 कतरियाल, 10 कतरियाल और 50 कतरियाल बैंक नोट्स के अपडेटेड वर्जन को जारी करने की घोषणा की है और ये अपडेट जो है कतर की 5th सीरीज करेंसी के फेस्ड रिविजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और नए नोट्स में जो बदलाव हैं वो क्या हैं? कतर का अपडेटेड ऑफिशियल स्टेट एम्बलम, अरबिक न्यूमरल्स में चेंजेस और नई इशू डेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि पुराने कतरियाल 5, कतरियाल 10 और 50 कतरियाल नोट्स अभी भी वैलिड हैं और लीगल टेंडर में रहेंगे। पुराने और नए दोनों वर्जन्स मार्केट में साथ साथ सर्कुलेट करेंगे। लोग और बिजनेसेस दोनों तरह के नोट्स को बिना किसी दिक्कत के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और एक गाना प्ले करते हैं किंग की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:16 हो रहे हैं और यहां पे हम जरा बात करते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में, जो एक वन ऑफ टेस्ट मैच है जिसका डे 3 चल रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया ने 564 में जो है डिक्लेयर कर दिया था और अभी अफगानिस्तान की बैटिंग चल रही है, जहाँ पे 142 रन्स में 7 विकेट वो गिरा चुके हैं 422 रन्स के साथ, जो है ट्रेल कर रहे हैं। तो बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए और देखिए इट्स क्वाइट क्लियर कि अभी यहां से कौन जीत सकता है, बट जीतना जो है उसके चांसेस ज़्यादा है इंडिया के, और ड्रॉ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, वहाँ शायद एक मिरेकल जो है आ जाए अफगानिस्तान के साइड से, बट लेट्स सी क्या होता है। मगर यहाँ पे जो है ये बात बताते हुए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी ही देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो एक बहुत ही खास खबर लेकर आएंगे, उस खबर के लिए तैयार हो जाइए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win
3: the big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

भाई ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक आई ओपनर भी है, क्योंकि जब इस गाने के बोल को हम ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। उसके साथ साथ हमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा जो है कैश का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में बढ़ चुका है, बिना कैश के कुछ हो नहीं सकता, और कैश तुम्हारे पास कितना है उसके हिसाब से तुम्हारी वैल्यू जो है आजकल आंकी जाती है। कैश नहीं तो भाई फिर कुछ नहीं, यही एक सिलसिला चल रहा है दुनिया का अभी। अब कैश के बारे में बात कर ही लिया तो हम जरा ये भी बात कर लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस को इस बार कितना कैश मिलने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को जो है USD 50 मिलियन मिलने वाले हैं, $50 मिलियन जो है, और ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड एक प्राइज मनी है, जहाँ पे टोटल $655 मिलियन जो है इसमें लगाए गए हैं, और रनर्स आपको $33 मिलियन मिलेंगे, थर्ड प्लेस वाले टीम को $29 मिलियन मिलेंगे, फोर्थ प्लेस में जो टीम है उसको $27 मिलियन जो है मिलेंगे, और क्वार्टर फाइनल में जो टीम होंगी उनको $19 मिलियन, राउंड ऑफ 16 में $15 मिलियन, राउंड ऑफ 32 में $11 मिलियन, और ग्रुप स्टेज में $9 मिलियन। मतलब भाई खर्चा ही खर्चा, मतलब सोच के देखिए इस पूरे टोटल फाइनेंशियल पैकेज जो इस टूर्नामेंट का, इट इज समवेयर अराउंड $871 मिलियन। और इसके वर्ल्ड कप के बारे में जिनको भी अगर स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं है, मैं बता दूं कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है होने वाला है June 11 से लेकर July 19 तक, और ये तीन कंट्रीज में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको में। और देखिए इतने बड़े लेवल पे जो है, इतने बड़े स्केल पे जो है वर्ल्ड कप होने वाला है, और कतर भी वहाँ पे है, कतर की टीम वहाँ पे है, उनका एक मैच जो है एक वार्म अप मैच एल साल्वाडोर के साथ जो हुआ था, जिसमें 0-0 स्कोर रहा, टाई रहा, और देखते हैं क्या होता है टूर्नामेंट में, किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है कतर के साइड से आता है, ये सब देखने के लिए हम भी काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और थोड़ा सा और अगर ग्लिम्स में देना चाहूँ, एक ग्लैंस देना चाहूँ इस वर्ल्ड कप के बारे में, तो 48 टीम्स हैं इन टोटल, 104 मैचेस है, 40 डेज तक का ये टूर्नामेंट चलेगा, 16 वेन्यूज़ हैं, और एक ग्लोबल शोपीस, यस दैट इज फीफा वर्ल्ड कप 2026 फॉर यू। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जावेद अली की आवाज में सुनते हैं एक दिन तेरी राह में। अब मेरा हो गया, जावेद भाई गाएंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: एवरीवन, मैं हूँ आरजे कशिश और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो?
1: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
2: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
0: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
3: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द, आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list and watch out. The label itself is very tricky. You read on it, sugar-free. Does it mean sugar-free 100%? No, it's not the case.
0: So what do you think about this activity?
3: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. Yeah. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
0: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
4: पलट मेरे यार।
5: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tod with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
7: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
6: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
7: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
6: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
8: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
9: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
10: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग,
11: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
12: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
13: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के बारे में, जहाँ पे अब जो अपडेट्स आए हैं हमारे पास उसके हिसाब से देखें तो स्कोर जो है 152 पे ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद फिर से जो है नया स्टार्ट हुआ है, सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ है, चार रन जो है अभी स्कोर किए उन्होंने, 1.2 ओवर्स हो चुके हैं और अभी 408 रन से जो है अफगानिस्तान ट्रेल कर रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से वो लोग परफॉर्म करते हैं। अगर हम इस पूरे टेस्ट के स्टैट्स के बारे में देखें तो इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही अच्छा एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस इंडिया के साइड से जो है देखने को मिला है। शुभमन गिल जो कप्तान है, कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 177 बॉल्स में 126 रन स्कोर किए हैं। केएल राहुल ने 100 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी काफ़ी अच्छा जो है एक बैटिंग डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिखाया है, क्योंकि 68 बॉल्स में 52 रन उन्होंने दिए हैं। अगर हम टेल एंड की बात करें तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया यार। इवन मानव सुतर ने भी 28 रन बनाए हैं, 22 रन मोहम्मद सिराज ने भी दिए हैं, कुलदीप यादव ने 9 रन दिए हैं। बट देखा जाए तो बैट्समैन लोगों ने भी थोड़ा, मतलब बॉलर लोगों ने भी थोड़ा अच्छा बैटिंग किया है, डिसेंट बैटिंग किया है, नॉट बैड। और उसके हिसाब से एक और चीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, वो ये है कि अफगानिस्तान के इनिंग्स की अगर हम बात करें तो रहमत शाह के अलावा किसी का भी एक हाई स्कोर गया नहीं है और उनका भी 60 रन का है। 135 बॉल्स में उन्होंने 60 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद हशमतुल्ला शाहिदी ने 20 रन स्कोर किए हैं, बाकी सब जो है थोड़ा नीचे हैं, 17 रन आए हैं। सादिकुल्ला अतल के बैट से, अब्दुल मलिक के बैट से 16 रन आए हैं। तो एक बहुत बड़ा बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक तो आया नहीं है, बट देखते हैं इस इनिंग्स में किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वो इंडियन बॉलर्स पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। और यही बात बताते हुए, यही अपडेट देते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: तुरंत आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:08 हो रहे हैं और यहां पे जो है एक छोटा सा ट्रिविया हम लेकर आए हैं, जिसको एक सवाल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। पहले तो सवाल पूछेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने भी कंट्रीज ने वर्ल्ड कप जीता है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा एक्टिव ड्रॉट रहा है? ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ऑलरेडी, बट बहुत सालों से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता नहीं है, तो सबसे लंबा स्ट्रेच ऐसी कौन सी वर्ल्ड कप विनिंग कंट्री का है जिनका बहुत साल से वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल हो चुका है या फिर नामुमकिन हो चुका है, जो बहुत सालों से जीते नहीं है। अभी जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर ब्राज़ील ने जो है लास्ट में जीता था 2002 में, और 2002 से 2026 के बीच में 24 साल हो गए, ठीक है, तो वैसे ही ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका वर्ल्ड कप विदाउट अ वर्ल्ड कप कितना टाइम हो चुका है, सबसे ज्यादा टाइम कौन सी कंट्री का हुआ है, ये आपको बताना है। और मैं एक क्लू आपको दे देता हूँ, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। अब बताइए, और खासियत ये भी है कि इस कंट्री का फीफा वर्ल्ड कप के साथ बहुत बड़ा नाम भी है, वो भी क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और धुरंधर मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हैं। मेरा बहुत फेवरेट गाना है, इस गाने को एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब मेरे पास आया है। मुझे मैसेज किया है रोहित भाई ने, और उन्होंने बोला है उरुग्वे, जो बिल्कुल सही जवाब है। 1950 में आखिरी बार उरुग्वे ने जो है अपना वर्ल्ड कप जीता था। अब जो है 76 ईयर्स हो चुके हैं, जी हाँ 76 ईयर्स, अब तब से उन्होंने एक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और इसकी खास बात यह है कि सबसे पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो उरुग्वे ने ही जीता था, वो उरुग्वे में ही हुआ था। तो ऐसा एक रिश्ता भी है उरुग्वे का वर्ल्ड कप के साथ, मगर पहला वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है वो फिर से उस मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर पाए, और मतलब 1950 के वर्ल्ड कप के बाद वो उस मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर पाए। और 1950 के वर्ल्ड कप का एक और बहुत बड़ा एक चीज़ मैं बताता हूँ, इनका मैच हुआ था, उरुग्वे का एक मैच हुआ था ब्राज़ील के साथ, और उस टाइम पे मैराकाना स्टेडियम में मैच हुआ था। बहुत ही बड़ा मैच था ये, और इस मैच में जो है उरुग्वे ने जिस तरीके से ब्राज़ील को हराया, जिस तरीके से लीड लिया अपना, पूरा मैराकाना स्टेडियम जो है शांत हो गया था, चुप सा हो गया था। मगर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग मैच था ब्राज़ील के लिए वो, और ब्राज़ील फुटबॉल फैंस के लिए सही में दिल तोड़ देने वाला एक नज़ारा था वो भी, जिसका बदला उन्होंने 1958 में वर्ल्ड कप उठा के लिया। बट या अभी फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में आएंगे वापस कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio
1: Olive, Jio Bindas. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक

में 9:33 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। और आज हम टेक जोन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि कितना कुछ बात, मतलब गेमिंग का एक वो चल रहा है, वर्चस्व चल रहा है आजकल बच्चों के बीच में। गेमिंग कितना घुस चुका है बच्चों के दिल में। इवन मैं भी बहुत ही ज़्यादा गेम खेलना पसंद करता हूँ। तो ये बात जब मैं बोलूँगा तो जो भी लोग गेम खेलते थे या फिर गेमिंग कंसोल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत बहुत ही बढ़िया एक बात लगेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है एक्सबॉक्स सीरीज X25 का लिमिटेड एडिशन, जो नवंबर से अवेलेबल होगा। ठीक है, X25 जो है 25 ईयर्स ऑफ एक्सबॉक्स का एक स्पेशल एडिशन होने वाला है और इसमें एक ट्रांसलूसेंट ग्रीन बॉडी होगी कंसोल के लिए भी, कंट्रोलर के लिए भी। उसके अंदर के जो चिप वर्किंग्स हैं उन सबको दिखाने जैसा एक उसका वो होगा, डिज़ाइन होगा। उसके साथ साथ एक एक्सबॉक्स 25 का एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग भी है जो कंसोल और कंट्रोलर में दोनों में होगा। और सोच के देखिए, जो एक्सबॉक्स के फैन बॉयज रहे हैं उनके लिए सही में ये बहुत ही एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। जो गेमिंग के फैन बॉयज रहे हैं, गेमिंग कंसोल के फैन बॉयज रहे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ यार ये एक लिमिटेड एडिशन सीरीज है, अगर हम इस पर अपना हाथ लगा पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन है इसका, एक टेक गीक काइंड ऑफ एक डिज़ाइन भी है। फिलहाल यही बात बताते हुए हम एक काम करते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं, दिल कबड्डी मूवी का गाना सुनते हैं सचिन गुप्ता और जसप्रीत की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेज़बान सुदेव जियो बिंदास।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

तो भाई यही बोलते हुए टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे कशिश पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें सुनाने के लिए, साथ ही साथ पलट के देखने के लिए आपको मजबूर कर देगी। ऐसी ऐसी बातें वो आपसे करेगी कि आपको पलट के देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं देखोगे तो भाई आपका लॉस है। तो यही बात करते हुए हम भी जरा निकलते हैं, टेक केयर। और हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: This hour is brought to you by
5: Homes Are Us. We complete your home.

0: सुखविंदर जी ने इतनी बार करिए ना करिए ना करिए ना ये कह दिया कि मैंने जो है मतलब ऐसे करिए ना के चक्कर में कुछ ना कुछ फालतू ऑर्डर कर दिया। ताल मूवी का ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे 106.3 रेडियो ऑलिव पर और मैं हूँ आपकी कशिश। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? लाइफ मस्त शो आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। एंड करिए ना करिए ना करिए ना इतनी बार इन्होंने बोला कि मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया। एंड मुझे ना अभी तक लगता था कि अडल्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि पैसे कमाने हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्ट करना है या फॉरेन ट्रिप पर जाना है, सेविंग करनी है बेसिकली। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अडल्टिंग का सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा इशू ये है कि खाना क्या है, खाने में क्या बनाना है, सब्जी कौन सी ले लें, ऑर्डर क्या करें, नाश्ते में ये खाया था तो लंच में ये खाएंगे, अब थोड़ा लाइट खाना चाहिए, अब थोड़ा हैवी खाना चाहिए, ऐसा क्या ऑर्डर करूं या ऐसा क्या जो है मैं कैसे ऑर्डर कर दूं कि डिलीवरी चार्जेस जो है वो ना लगे, ये सब सोचने में मेरी आधी एनर्जी चली जाती है। अब मैं क्या बोलूँ इसमें। वैसे लाइफ मस्त में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है आज हम करने वाले हैं रोज की तरह, तो बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। 3311063 ये जो है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जल्दी से आकर जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिए, दिन का जो है क्या हाल चल रहा है, गर्मी कैसी लग रही है, ये सब मुझे बता दीजिए। साथ ही में एक बहुत ही स्पेशल चीज जो है वो हम कल से कर रहे हैं, कल से इस पर बात कर रहे हैं और वो है पलट मेरे यार।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: कल क्या कुछ खास बातें हमने पलट मेरे यार पे की वो जो है आप सुन ही रहे हैं दिन भर, लेकिन आज क्या कुछ खास होने वाला ये भी बताऊंगी थोड़ी सी देर में। थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा यू नो पेशेंस रखो, बताऊंगी। तब तक एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक है, आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Check. Time check. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:13।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: ऐसी रातें दिल है जवान तुम कहो।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, लव यापा को तो नहीं पता लेकिन जेन जी यापा जरूर हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड लव यापा ये जो मूवी थी ना, इसमें दो लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया था। पहला आमिर खान साहब के जो बेटे हैं जिन्होंने लीड रोल निभाया है इस मूवी में। महाराज मूवी के बाद मुझे ऐसा लगा था कि जुनैद जो है वो कमाल कर देंगे, मतलब इतना अच्छी एक्टिंग करेंगे कि जानवी की जो बहन है खुशी, उन्हें कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन देखिए, अगर मुझे आपको इनके बहन के नाम से या फिर इनके फादर के नाम से इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा काम किया होगा, लोगों ने इन्हें कितना रिकग्नाइज किया होगा। सो इन्होंने तो ऑब्वियसली हमें डिसअपॉइंट किया। लेकिन जो दूसरे इंसान की मैं बात कर रही हूँ वो खुशी कपूर तो बिल्कुल नहीं थी, उनसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी ना। खैर, दूसरा इंसान जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया था वो था कुल्लू, आदित्य कुलश्रेष्ठ, जो एक स्टैंड अप कॉमिक है, जो एक राइटर है। अगर आपने फर्जी मुशायरा जाकिर खान का सुना है, सो उसके राइटर हैं कुल्लू, उनको माइक नेम उनका कुल्लू है। एंड काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ पे भी हमने उन्हें देखा हुआ है। एंड मैं उनसे डिसअपॉइंटेड पर्सनली इसलिए थी क्योंकि वो भोपाल से हैं, एंड कोई भोपाल का इंसान इतना एवरेज एक्ट तो कर ही नहीं सकता। हमारे तो रग रग में ओवर एक्टिंग है। आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपको समझ ही आ रहा होगा कितनी ओवर एक्टिंग जो है वो हमें कूट कूट के भरी हुई है। खैर, ओवर एक्टिंग करते हुए, ओवर रिएक्ट करते हुए ज़रा इस ओवर एक्टिंग वाले जो मौसम है उसकी बात कर लेते हैं। सो बहुत ओवर बहुत बार बोल दिया मैंने, खैर अब पर ओवर वाले जो टेम्परेचर है उसकी बात कर लेते हैं। 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का करंट टेम्परेचर है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एंड लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, कई लोगों का मेरे पास कल मैसेज आया था कि नहीं कशिश अभी तो 39 हो रहा है हमारे यहाँ। देखिए, मेरा फ़ोन मुझे मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर बता रहा है, हमारे इस जगह का आसपास का टेम्परेचर बता रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो, सो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर कुछ अलग हो रहा है सो मुझे 3311063 पर मैसेज करके बता दीजिए। खैर, थोड़ा क्यों बोला मैंने खैर थोड़ी ठंडक आपके दिल को पहुँचाने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: सो अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने इस दोस्त के साथ केके की आवाज में ये ट्रैक आप एंजॉय कीजिए। ये गाना जब भी मैं याद करती हूँ ना, सुनती हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों की याद आ जाती है। फिर मुझे याद आता है कि यार अभी करेंटली ऐसे कोई दोस्त है ही नहीं मेरे पास।
3: यारो
0: गाना एंजॉय करो, कहते रहो जी उपिंदर।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.

कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जरूर हो गया है। क्या हुआ है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कल हो रहा हो मूवी के इस गाने के बाद बारी आ गई है हमारी बातचीत की। हां जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कशिश एंड आपके लिए लाइव मस्त शो लेकर आ गई हूं। एंड जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह ही रही थी कि मैं जब आपको टेम्परेचर बताती हूं, अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग टेम्परेचर जो है वो होता है, फ़र्क होता है कई बार टेम्परेचर का। सो अभी मुझे जो है एक मैसेज आया, एक फ़ोटो खींच के उन्होंने भेजी है कि हमारे यहाँ तो 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यार इसमें भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं अपनी मम्मी को इंडिया में कॉल करती हूँ और उनको बताती हूँ ना कि यार मम्मी अभी यहाँ पे तो ना 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो मम्मी उधर से बोलती है हमारे यहाँ 45 हो रहा है, हमारे यहाँ 43 हो रहा है। और अभी मतलब पहले इसमें कंपटीशन कर रहे थे और अब जब मैं बताती हूँ कि मम्मी बहुत गर्मी है 43 डिग्री सेल्सियस है, तो मम्मी बोलती हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो मानसून आ गया है। मतलब विन विन सिचुएशन हमेशा मम्मी के पास ही कैसे होती है मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर विन विन सिचुएशन तो इस वक्त जून में है हम बॉलीवुड के जो फैन है उनके पास, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग मूवीज जो है उनका लाइनअप है, यानी एक के बाद एक अमेजिंग मूवीज जो है वो लॉन्च होने वाली है, रिलीज होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सो 12th जून को जो है मोस्ट अवेटेड मूवी, मतलब मैं तो इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं। मैं वापस आऊंगा, जो मूवी है दिलजीत दुसांझ की, शिवानी की और वेदांग रैना की, इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन है, वो मूवी रिलीज़ हो रही है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉकटेल 2 भी आने वाली है, एंड उसके बाद वेलकम टू द जंगल, उसका भी इंतज़ार। मुझे नहीं पता वेलकम टू द जंगल का सच में लोगों को इंतज़ार है या नहीं है, लेकिन इन दोनों मूवी का यानी कॉकटेल 2 का और मैं वापस आऊँगा का तो सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप कौन सी मूवी का वेट कर रहे हैं बताइए मुझे 3311063 पर। ये गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता. ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है. फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है. इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है. द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन. हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे.
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: जरूरी इस पे बात करेंगे पूरी एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: हाय एवरीवन मैं हूं अरमान मलिक 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदा

डिंपल कबाड़िया जी के हैप्पी वाले बर्थडे पर. ये वो गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट है. बीइंग अ जेन ज़ी, अगर ये गाना मेरा फेवरेट है तो सोचो क्या वाइब है इस गाने में. 69 इयर्स के हो गए हैं वो एंड स्टिल इतने खूबसूरत, इतने आइकॉनिक. सो एक बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे तो बनता है उनके लिए. वेलकम बैक जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश. एंड यार ये जो गाना है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे दादू, मेरे पापा और मैं इस गाने पे साथ में वाइब करते हैं. एंड मेरी मॉम, दादी और मैं इस बात पे वाइब करते हैं कि यार डिम्पल कपाड़ियों के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं. एंड आज भी अगर हम उनकी फोटोज़ देखें, उनकी वीडियोज़ देखें, उनके अगर नई मूवीज़ की मैं बात करूँ तो उसमें उनके बाल, ओ माई गॉड, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगते हैं. बस ऊपर वाले से एक ही दुआ है, ऐसे बाल दे दो मुझे, फिर मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगी. खैर, कंप्लेन तो हम अक्सर ये भी करते हैं कि यार मंथ शुरू हुआ है, सैलरी अभी अभी आई है और पैसे खत्म हो गए हैं. मंथ एंड पे भी यही रोते हैं और मंथ की शुरुआत में भी इसी बात पे रोते रहते हैं. तो अनुपम मित्तल ने जो है इस प्रॉब्लम का एक सलूशन दिया है और इसके बाद इंटरनेट ने उन्हें घेर लिया है. सो अनुपम मित्तल जो शार्क टैंक इंडिया में एक शार्क भी थे और जिनके काफ़ी सारे मैच मेकिंग ऐप्स भी हैं, सो उन्होंने ये कहा है कि आपको जो है एक ऐसा रिजीम फॉलो करना चाहिए जिसमें कंपनीज दो बार सैलरी दें. मतलब एक सैलरी को स्प्लिट करके पहली सैलरी जो है वो 15th ऑफ द मंथ को मिले एंड सेकेंड सैलरी 30th ऑफ द मंथ को मिले, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो और मनी फ्लो जो है वो मेंटेन रहे कंपनी के पास भी और एम्प्लॉय के पास भी. आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका सही है, क्या ऐसे दो बार सैलरी मिलनी चाहिए? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर आप बता सकते हैं 3311063. कॉल मी बी का ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास.

0: इतने प्यार से मुस्कुराना, वो भी 51 की एज में, कि मतलब मुझ जैसी 22-23 साल की जो लड़की है वो फेल हो जाए। गलत बात तो है, देखो शिल्पा शेट्टी जी आप अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। इतना योगा कर लिया है, इतना परफेक्ट बना लिया है खुद को कि अब हम सबको कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। केयर कॉम्प्लेक्स को साइड में रखकर आप सबको वेलकम करते हैं 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए लाइफ मस्त है शो लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त तो देखिए शिल्पा शेट्टी जी की चल रही है, आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड देखिए सिर्फ ये एक कोई भी नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसके बारे में हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है वो सोचती भी नहीं है। इनके पास ना कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है और इनकी जो पहली मूवी है हम सब जानते हैं बाजीगर, शाहरुख खान के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। उस मूवी के साथ साथ इन्होंने सेम ईयर में यानी 1993 में तेलुगु मूवी है उसमें भी डेब्यू किया था, यानी एक ही साल में दो इंडस्ट्री में इन्होंने डेब्यू किया था। एंड अगर एक और पाथ ब्रेकिंग चीज़ जो इन्होंने किया है वो मैं आपको बताऊं तो इन्होंने ना अपना एक ऐप और अपनी एक बुक जो है वो लॉन्च करी है जो किसी भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस ने किया नहीं है। सो बस आज इनको हैप्पी वाला बर्थडे विश करते हैं एंड इनके अमेजिंग वाले गाने जो है एंजॉय करते हैं रेडियो ऑलिव पर।
1: बाजीगर की प्रिया से लेकर धड़कन की अंजलि के रोल में फिट होने की बात हो या योगा करके फिट होने की, शिल्पा शेट्टी ने सब कर दिखाया है। रेडियो ऑलिव विश करता है सुपर से ऊपर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हैप्पी बर्थडे। आज पूरे दिन सुने इनके गाने हर घंटे।
0: बाजीगर मूवी से किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, शिल्पा शेट्टी का डेब्यू सॉन्ग

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:16 यानी 11:16.
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम. मैं हूं जैकी श्रॉफ.
6: रेडियो 106.3 जे ओबिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

यार ये गाना कितना पुराना है ना, मतलब सुनिधि चौहान तब भी उतना ही रॉकिंग गायक होती थी। अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर, और मैं हूँ आपकी कशिश। लाइव मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आज सुनिधि चौहान को जो है जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बस हमारी जो छोरियाँ हैं वो छोरों से बिल्कुल कम नहीं है। मैंने लाइव कॉन्सर्ट भी सुनिधि चौहान का अटेंड किया है एंड व्हाट अ वाइब, व्हाट अ वाइब, बिना रुके लाइव गाना डांस करना। टेलर स्विफ्ट के पीछे लोग जो है वो पागल होते हैं, लेकिन सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में आप एक बार जाओ मजा ही आ जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए, लड़कियों को कम ना समझते हुए, अब हम क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि एज अ सर्टिफाइड क्रिकेट पगलू मुझे जो है क्रिकेट का काफ़ी शौक है। एंड वुमेन्स क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टीम अभी जो है इंग्लैंड के खिलाफ हाई वोल्टेज T20 जो है वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड BCCI ने हाल ही में एक बड़ा टूर जो है उसके लिए स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिए, जिसमें कुछ पुराने चैंपियंस जो है वो वापस आ रहे हैं एंड कुछ नए प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को मौका भी दिया गया है। तो इस इंग्लैंड के टूर में जो है हरमनप्रीत जो है वो टीम को लीड करेंगे एंड स्मृति मंदाना जो है वो वाइस कैप्टन रहने वाली हैं। एंड बहुत ही एक्सप्लोसिव सी ये जो टीम है ये बनाई है। अब कल का मैच जो है वो शेड्यूल है, सो अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। 9 जून यानी कल हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारी टीम ने खेला है। सब कुछ मैं बताऊंगी यार, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप तो अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करते रहो। तेरी ओर गाने का नाम है, सिंग इज किंग मूवी का ट्रैक है एंड इस मूवी की कैटरीना के जो लुक्स हैं वो इतने वायरल हो रहे हैं इस वक्त इंटरनेट पे कि ओ माय गॉड, साड़ी से लेकर वो एक पिंक बूट्स वाला लुक है, लोग सच में उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा या नहीं देखा बताओ और गाना एंजॉय करो, कहो जियो बिंदास।

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
0: Radio Olive, your happiness frequency.

0: ये पूरी एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास पलट
1: मेरे यार फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल स्लो कुक्ड मंडी परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी नो नॉइस नो ड्रामा जस्ट सी फूड डन राइट बीबीक्यू फिश क्रैब्स prawns crafted with patience served with pride danatal pahar the ultimate qatari adventure souq waqif alkhol
2: grow your brand across qatar's key audiences connect with hindi listeners on radio olive 106.3 fm malayalam audiences on radio suno 91.7 fm and arabic listeners on tatkar 107.4 fm on air visibility supported by performance driven digital marketing campaigns simple effective integrated call 3009 1063 or 3082 1063

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि बड़ा नाम करेगी बेटी हमारा, ऐसा काम करेगी और इतना बड़ा नाम करेगी कि हमारा बेटा जो है वो जो भी काम करेगा वो छोटा ही लगेगा। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड अब क्या होता है ना कि क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ एंड मुझसे छोटा एक भाई है, तो वो जो भी काम करता है वो हमेशा मुझसे कंपेयर हो ही जाता है कि कशिश ने तो ये किया था, कशिश तो ऐसा करती थी, कशिश ने तो ये करके दिखा दिया था। बेचारे उस पर जो है थोड़ा सा प्रेशर तो बन गया था कि कशिश करती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी करूँगा। सो जितने भी छोटे भाई बहन है, आई एम सॉरी, हम बड़े भाई बहनों के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहना पड़ जाता है। कोई बात नहीं यार, आपके लिए भी अप्रिसिएशन जो है वो मेरे दिल से बाहर निकलता है, तो आपको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और आपकी नज़र, आपके नाम जो है एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि आप जो है वो रॉक स्टार हो और आपकी लाइफ जो है वो एकदम ब्लॉक बस्टर है, इसीलिए हमारे अगले गाने का नाम भी ब्लॉक बस्टर ही है। ये गाना एंजॉय करो, कोक स्टूडियो का ये गाना है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में पलट मेरे यार के साथ, तो स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas,

0: अलग रेज, एक अलग टाइप का गुस्सा इस गाने में साउंड करता है, वो पैशन जो है वो सुनाई देता है. मेट्रो इन दिनों मूवी से राघव चैतन्य की आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपने एंजॉय किया. 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश. शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं. एंड इस वक्त हम बात कर रहे हैं पलट मेरे यार की.
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार.
0: अब देखिए पलट मेरे यार पे कल हमने बात की थी कि खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको आप पलट के अक्सर नहीं देखते हो और फिर उससे क्या क्या जो है नुकसान आपको होता है. एंड ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खाने पीने की चीजों के पैकेट के पीछे देखनी चाहिए, पलट के देखनी चाहिए. सो रेडियो ऑलिव का और मेरा एक इनिशिएटिव है जहां पर हम आपको कह रहे हैं कि यार जरा मेरे यार पलट के देखो कि आखिर आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे हो उनके पीछे कॉन्टेंट में आखिर क्या कुछ लिखा है. सो थोड़ी रिसर्च मैंने की तो मैंने ये ध्यान दिया कि सिर्फ खाने पीने की चीजों के साथ ऐसा नहीं है. हम चाहे हमारे डेली यूज का कोई भी सामान हो अगर उसे पीछे पलट के नहीं देखते हैं, उसके पीछे कंटेंट नहीं चेक करते हैं तो हमें काफी सारे नुकसान जो है वो होते हैं. अगर मैं बात करूं रूम फ्रेशनर्स की, सो रूम फ्रेशनर्स को अगर आप पलट के देखोगे उसके पीछे का कंटेंट एक बार पढ़ के देखोगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि उसमें इतने सारे हार्मफुल चीजें हैं जो आपके बॉडी की काफी यू नो वर्किंग को इम्बैलेंस कर सकते, हार्मोनल इंबैलेंस तक हो सकता है हमारे रूम फ्रेशनर से. तो बस उस पर भी बात करेंगे. लेकिन आज हमारे कटघरे में जो है हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, क्योंकि रिसर्च में मुझे ये पता चला है कि 2 गुना ज्यादा केमिकल्स जो है पिछले 10 सालों में हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अब लोग डालने लग गए हैं, कंपनीज डालने लग गई हैं. एंड अगर मैं बात करूं तो 3 में से 1 स्किन केयर प्रोडक्ट में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो वो पैकेज पे जो है बहुत छोटा छोटा लिस्ट करते हैं या लिस्ट भी नहीं करते. बस इसी में डिटेल पर बात करेंगे हमारे शो पर लाइफ मस्त है पर एंड पलट मेरे यार पर.
1: पलट मेरे यार,
0: हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जो है डर्मेटोलॉजिस्ट वो भी होंगी जो आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगी कि यार जब अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. सो स्टे ट्यून्ड रहिए पलट मेरे यार पे. एंड 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप ऑडियो नोट भेजिए मुझे कि आप पलट के फ्लिप करके प्रोडक्ट्स को देखते हैं या नहीं देखते और उसके पीछे का कॉन्टेंट जो है वो पढ़ते है या नहीं पढ़ते हैं. 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है. जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए, ऑडियो नोट भेज दीजिए. तब तक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. बादशाह का सिंगल है ये, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास. आपके मैसेजेस का ऑडियो नोट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:12.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: एग्जैक्टली तू है तो मैं हूँ, यानी अकल है तो आपकी हेल्थ है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और लाइफ मस्त है शो में हम ले आए हैं आपके लिए
1: पलट मेरे यार।
0: हाँ जी, तो मेरे यार पलटने को तैयार हो या नहीं हो, क्योंकि कल से जो है मैं आपसे बस इतनी सी इल्तिजा कर रही हूँ कि जरा पलट के देखो, मतलब अपने पीछे पलट के देखने की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट हो, चाहे आपके किसी घर पे यूज आने वाला कोई सामान हो, उसे पलट के देखो, एक बार कॉन्टेंट पढ़ के देखो कि यार आखिर इसमें है क्या क्या, और कहीं ये जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ये मेरे लिए रिस्की तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है। आप देखो, जैसे मैं ही आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कल जो है मैं जब ऑफिस से गई तो मैं शावर ले रही थी, एंड तब मैं एक बहुत बड़ी बोतल बाथरूम में रखी हुई थी, शावर जेल मैं लेकर आई हूँ, एंड उस पे जो है नेचुरल गोट मिल्क से बना हुआ लिखा हुआ है, एंड वो डीटैन भी करता है एंड उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो मैं जब गई थी लेने के लिए एक शार जेल, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, लेकिन इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड उस पर ऑर्गेनिक सा एक बहुत अर्दी सा टोन है और ऑर्गेनिक उस पर डिज़ाइंस बनी हुई हैं, जिससे आपको फीलिंग आती है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगा। एक गोट की फ़ोटो बनी हुई है, गोट मिल्क से बना हुआ वो है, सो ऐसा फ्रंट पे लिखा हुआ था, तो मैंने बिना कंटेंट देखे उसे परचेज कर लिया था, उसे खरीद लिया था क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे भी था। लेकिन कल जब नहा रही थी, और क्योंकि पलट मेरे यार पे मैं आपसे डेली बातें अब ये कर रही हूँ कि यार पलट के देखो, तो मैंने उस प्रोडक्ट को पलट के देखा, एंड तब मुझे पता चला कि उसमें इतने पैराबेंस हैं, इतने सारे केमिकल्स हैं कि अगर मैंने उसे अपनी स्किन पे डेली यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है। तभी मैंने सोचा कि यार आज तो आऊँगी और आप लोगों से बात करूँगी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स और जितने भी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनमें भी पीछे ऐसे कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें पलट के देखना होता है। तो बस इसी पर बात करने के लिए मैं हमारी एक्सपर्ट को ले आई हूँ। हाँ जी, एस्टर डीएम हेल्थ केयर से हमारे साथ डॉक्टर अनिला हैं, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सो वेलकम डॉक्टर अनिला, कैसे हो आप एंड कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू।
3: सो एज अ डर्मेट, डू यू रिकमेंड पीपल टू लुक एट द कंटेंट्स लाइक ऑन डेली बेसिस?
2: ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी हैज टू लुक at the contents, which is written very clearly at the back, but it always be in small letters, so you have to be very careful before you buy a product.
3: Okay, do you look back of the products what you buy?
2: Always.
3: Okay, not only about skincare products, about food also.
2: Most of the products we look.
3: Okay.
0: तो देखिए ये तो देखते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हमें अक्सर पलट के देखने चाहिए, उन पर बात करेंगे हम लेकिन थोड़ी सी देर में। आप स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑल पर, दिस इज पलट मेरे यार।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार,
0: कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर।
4: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
5: सर क्या पर ये बात है,
0: मूवी का नाम याद, सिंगर का नाम सोनू निगम, गाने का नाम है जीना है तेरे लिए। एंजॉय करो ये गाना, थोड़ी सी देर में डॉक्टर अनिला के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास

टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

0: गाने का नाम खोलो खोलो, मूवी का नाम तारे जमीन पर। अब देखिए तारे जमीन पे ईशान अवस्थी को जो प्रॉब्लम थी ना, बिल्कुल उसी तरह हम भी हैरान परेशान हो जाते हैं जब हमारे हाथ में आता है कोई प्रोडक्ट और हमें उसे फ्लिप करके देखना होता है। बिल्कुल जिस तरीके से ईशान अवस्थी को अल्फाबेट्स उड़ते हुए दिखने लग जाते थे ना, कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लग जाते थे, बिल्कुल उसी तरह है हमें भी यही सब दिखने लग जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: क्या मेरे यार, प्रोडक्ट्स को पलट के तो आप देख रहे हो लेकिन ध्यान से देखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि हाँ हाँ कशिश हम तो पलट के देखते हैं। लेकिन क्या पलट के देखते हो? पलट के प्राइस देखते हो? पलट के बस मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते होगे? लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखनी बहुत जरूरी है, और यही बताने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिला जो है वो इस वक्त हमारे साथ है। एंड क्योंकि कई बार ना हमें समझ नहीं आता कि कौन से ये केमिकल्स हैं जिनका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सो बस आइए अब इनसे आगे की बातचीत जो है वो जारी रखते हैं।
2: So what are the key red flags that we should look for when we are buying skincare products or any cosmetic products?
3: So first of it is the harsh soaps or strong soaps, which is normally written as sulfates, sodium lauryl sulfates. Okay, so this is the content which gives you that bubbly lather when you use it on your skin. But it can be extremely harsh.
2: Or what are the names of these content written in the bag?
3: It is mainly written as sulfate or sodium lauryl sulfate.
2: Okay.
3: And the second one is mostly preservatives. So you should always look for the letter MI, okay, which stands for methyl isothiazolidinone.
2: Okay.
3: It can sometimes result in severe allergic reaction.
2: Okay.
3: So that the Medical Society has literally named it as allergen of the year in 2013.
2: Ooh, okay.
3: And third one, we all fond of good smell, scents always, right? So we should always look for the content perfumes or fragrance because it can hide actually many, many, many different distinct chemicals. And it can cause some serious reaction, or it can range from mild to moderate to even serious reaction. So always... Okay.

0: go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
1: बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कई बार सुना है कि जितने स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनमें खुशबू आ रही है सो यानी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिला है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है.
2: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार,
1: तो मेरे यार पलट और पलट के क्या क्या देखना है ये हम थोड़ी सी देर में और डिटेल में बात करेंगे. तब तक आप ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करके आओ. पटियाला हाउस का गाना लॉन्ग द लश्कारा एंजॉय करो जी. मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में. जियो बिंदास.

0: An exciting cultural milestone is happening in Doha to commemorate Swedish National Day. The Swedish Embassy and Swedish Association Qatar is hosting a special celebration at IKEA Qatar. As a symbol of Sweden, IKEA represents the very best of its homeland, bringing Swedish heritage, sustainable design and the famous spirit of togetherness to life all over the world. This official gathering brings together dignitaries and partners to honor the strong bonds of friendship between Sweden and Qatar, marking a day of shared culture and pride. Official radio partner, Radio Olive.
1: Radio Olive Pay. Radio Olive Pay. Story of the day.
2: Story of the day.
3: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता. ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है. फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है. इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है. द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन. हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे.

0: करेंगे पूरी एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास पलट
1: मेरे यार फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान वन फैमिली वन मिशन

0: ये गाना चल रहा है, ये ट्यून चल रही है और आप अपनी कुर्सी से उठ के मतलब डांस करना शुरू नहीं किया आपने, तो आप बॉलीवुड फैन तो नहीं हो यार। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए लाइफ मस्त है शो में लेकर आ गई हूँ
1: पलट मेरे यार।
0: हाँ जी, पलट मेरे यार पे, जहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि जरा अपने प्रोडक्ट्स को जो आप खरीद रहे हैं उन्हें खरीदने से पहले पलट के देखिए कि उसके पीछे क्या कुछ खास इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंटरनेट के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स के नाम जो है वो मैंने याद करने शुरू कर दिए, पेप्टाइड, नाइसिनामाइड और एक तो है जो आप जानते हो कि मुझे बोलना है लेकिन मुझे बोलना आ नहीं पाएगा इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। एंड बस अब देखिए, जब भी मैं ये सब देखने के लिए किसी पैकेट को पलट के देखती हूँ तो वहाँ पे इतने सारे केमिकल्स के नाम होते हैं कि समझ ही नहीं आता है। तो बस इसी को और ज़्यादा सिंपल करने के लिए कि क्या कुछ ध्यान में रखना है आपको जब भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेते हैं, बस इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिला इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। सो डॉक्टर साहब, अगले सवाल आ रहे हैं आपकी तरफ।
2: ओके, समटाइम्स वी यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक एलोवेरा जेल और राइस वाटर but it's packaged na, so aloe vera gel gets spoiled in like 1 hour 2 hour when you scrape it out from the leaf, but how can it survive without preservatives in a tube or a bottle? Is it not risky to use those products?
3: See, actually don't be fooled by the term it is fully natural or fully organic. Because there are a lot of preservatives or fragrance which is added to increase the shelf life of the product. Always natural doesn't mean that it is 100% safe to use. You have to be careful when you choose a product.
2: So, jate jate, what one message you want to give to our listeners about Palat Mere Yaar?
3: This is actually a very good activity because most of the people, they just look at the front page or the friend of the bottle. The biggest piece of advice for me to my patients is the friend of the box is always advertising and the back of the box is the reality. So you'll always have to check what is the ingredients which is written in the back of the box. And according to the law, the concentrations are listed from top to bottom. So if you are looking for a specific ingredient and which is listed in the bottom of the pack, that means you are actually paying a premium for a very basic product.
0: Exactly, yahi baat to main aapko kab se samjha rahi hu aur keh rahi hu.
1: Palat mere yaar, palat mere yaar.
0: So mere yaar, palat ke jaane ka waqt aa gaya hai. Ab mulaqat hogi kal palat mere yaar ke day 3 mein aur bahut sari important information main aapko dene wali hu. So stay tuned rahega, mujhe duaon mein yaad rakhiyega aur aap palat kar dekhte hain ya nahi dekhte hain aur hamara ye initiative kaisa laga zarur batayega 3311063 par.
4: Radio Olive par. Song of the hour.
1: Ye gana.
0: Tab tak ye fresh song of the hour. Vya karwa do ji. Aur aapke radio sets par. Mujh jaise kai log ab yahi keh rahe hain ki ab ye independent ho na nahi ho pa raha hai. Vya karwa do mera. Dopahar mein sone ka man kar raha hai ab mera. Home maker banne ka man kar raha hai mera. Jo ki kafi tough hai I know. Wo karke bhi main jo hai bore ho jaungi ya thak jaungi. Par koi baat nahi. Abhi gana enjoy karo. Mulaqat hogi ab kal.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
4: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलीपुर.

0: हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एडबिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल फैल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फैल्कन फिटनेस बिन उमरान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
1: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: पंकज उदास साहब की आवाज में और आहिस्ता कीजिए बातें। धड़कने कोई सुन रहा होगा, खूबसूरत गाना भाई। बातें आहिस्ता करने के लिए तो ऐसे यू नो दीवारों के लिए भी कहते कि वो भी सुन लेती, उनके भी कान होते हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं। मैं तो इतनी लाउड हूँ कि अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है, स्टूडियो तो हमारा वही है ना, साउंड प्रूफ है तो किसी को पता नहीं चल रहा है, बट इफ आई एम सिटिंग ऑन माय डेस्क, मैं वहाँ बात कर रही हूँ, दूसरे कॉर्नर ऑफ द ऑफिस में भी सुनाई देगा, इतना लाउड है। तो ये वाला गाना मेरे लिए तो बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता। वेल, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM, Tanisha aapke saath, Olive Recharge lekar aa gayi hu main. A very good afternoon, meri jaan. Monday, June 8th, kaisa ja raha hai aapka? How has the day been so far?
1: Chal tere mere is kisse ka sikka uchhale, chit mein teri hai pat tu mere hawa.
0: Day jaisa bhi ja raha hai, usko aur behtar karne ke liye to pakka main aa hi gayi hu, par janna bhi to hai कि अब तक क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, लंच अंच हुआ कि नहीं, कहां से सुन रहे हैं। यार इस टाइम के जितने भी रिमिक्सेस आ रहे थे ना, लाइक व्हेन दिस सॉन्ग केम, बहुत कमाल रिमिक्सेस थे, मतलब बुरा नहीं लगता था सुन के। अभी जो आ रहे हैं थोड़ा दर्द तो वो दे ही देते हैं। And G, this beautiful track और साथ में खुदाया इश्क रे,
2: इश्क रे, इश्क रे, इश्क रे, खुदाया इश्क होते होते हो गया।
0: फिलहाल इंतजार कर रहा है फहीम अब्दुल्ला की आवाज में एतबार फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल, और मैं इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का 3311 1063 पर। स्टे ट्यून्ड, एंड जी बिंदास मेरी जान।

0: तनिषा
1: मनाली ठाकुर की आवाज में महाराज मूवी से हाँ के हाँ, ये मेरे टाइप की नेगोशिएशन है, मतलब कि अगर मैंने बोल दिया ये मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए और उसके बाद आपके पास हाँ और हाँ वाला ही ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे मैसेज चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए और मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं। यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं। यहाँ पर हाल चाल पूछे थे, मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है, एज फार एज गुड एंड आप सुनाइए, होप गोइंग गुड। हाँ जी, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सब सही है यहाँ पे भी। और वक्त हो चुका है आज की मोटिवेशन का, तगड़ी वाली। जी हाँ, तो सुनिए, ये बिल्कुल ऐसे वेदर से अलाइन करती हुई लेकर आई हूँ मैं, टू स्टे हाइड्रेटेड थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़े से ज़्यादा ही पियो मैं तो कहूँगी, ठीक है, टू स्टे हाइड्रेटेड थोड़ा सा पानी पी लो, दुनिया गई तेल लेने, अब थोड़ा खुद के लिए जी लो मेरी जान। हाँ जी, स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू वांट, अभी तक लोगों के लिए करते आ रहे थे ना, थोड़ा अपने लिए भी कर लो, जरूरी होता है यार। और अभी कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास। कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song.

पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है वो साथ में रखें, फ्रूट्स ऐसे खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, और खाना एकदम लाइट खाएं क्योंकि बड़ी दिक्कतें हो जाती है और क्रेजी वाली गर्मी हो रखी है। अपना ख्याल रखना तो बनता है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और बाकी आपको चिल रखने के लिए यहाँ बढ़िया गाने हम चला रहे हैं, तो आइए इन्जॉय करते हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में खुदाया इश्क रे। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: Olive B. Story of the day. Story of the day. Oh, oh, oh,
1: oh. Story of the day. अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता. ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है. फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है. इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती हैं. द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन. हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ ओलिवी चार चल रहा है यहाँ पर और आसमा मुझसे पूछ रही है तनीषा आपने खाना खाया. थैंक यू सो मच पूछने के लिए. हाँ जी मैंने खा लिया पेट भर के एकदम और शो के पहले मैं खा ही लेती हूँ सो दैट इस वक्त मैं एकदम फ्री रहूँ आपसे बातें करने के लिए. आपने आप बताइए आपने खा लिया कि नहीं आसमा. एंड रेस्ट ऑफ यू क्या कर रहे हैं इस वक्त कहाँ से सुन रहे हैं मुझे सब जानना चाहूँगी. आ जाओ मैसेज करो और एक बार फिर से याद दिला रही हूँ इफ़ यू हैवंट माँ बहन मूवी जो आई है नेटफ्लिक्स पे देख डालो उसको. बाय द वे राइट नाउ आई एम वॉचिंग द आर्ट ऑफ सैरा. सो इट इज़ अ के ड्रामा एंड इट इज़ अ यू नो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग. क्रेजी है भाई बहुत मज़ेदार है. मैं ऐसे हुक हो चुकी हूँ. मुझे अगर 5 मिनट का भी वक्त मिलता है लाइक वेन आई एम गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस मैं उसको चला लेती हूँ. मुझे वो देखना है पर यू नो ऐसे एक लंबा स्ट्रेच नहीं मिल रहा है. वीकेंड का इंतजार फिर से कर रही हूँ. समझ ही चुके होंगे आप. सो उस लंबे स्ट्रेच में देख के मैं एक बार में खत्म कर दूंगी उसे. बट इफ यू आर अ फैन ऑफ यू नो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीजेस सो चेकआउट कीजिए नेटफ्लिक्स पे द आर्ट ऑफ सैरा. यस एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. रेडियो

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Delisha.
1: Jasmine Sanders ki awaaz mein main aur tu from the movie Durandar Revenge only on Radio Olive 106.3 FM Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par and dekho Qatar continuously koshish karta rehta hai you know hamari lifestyle ko aur Qatar ki har cheez ko enhance karne ke liye so that hum sab jo yahan reh rahe hain hum aur bhi better life jee sake aur you know aur zyada convenient ho jaye cheeze hamare liye aur isi ke chalte they have updated planning and architectural regulations for villas and mansions ji haan, which will offer aur badhiya flexibility for modern family living so ye jo naya rule hai it includes increased building heights mezzanine floors improved ancillary structures outdoor reception spaces and regulated residential expansions to maximize land use effectively agar aapke paas land hai to uska badhiya tarike se istemal bhi hona banta hai right so isiliye ye sare naye rules aur naye changes aur updates lekar aaye aapke liye so Qatar society of engineers ne bola hai ki bahut badhiya ye changes hain kyunki ab wo families ko aur zyada behtar design choices de payenge along with that they can balance privacy comfort and functionality so bhai sari cheezon ka khayal रखा जा रहा है अलॉन्ग विद दैट ये जो रिफॉर्म है इट विल एंकरेज इनोवेटिव आर्किटेक्चरल डिजाइंस क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करेगा और कतर नेशनल विजन 2030 को ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है हूएवर इज यू नो ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट और बिल्ड देयर ओन होम राइट नाउ या फिर चल रहा है ऑन गोइंग है तो इन चीजों का ख्याल रखिए आप और भी बेहतर बना सकते हैं अपनी लिविंग को संदरे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
5: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
4: ऑलिव रिचार्ज.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Ganesha.
1: शंकर महादेवन और शफकत अमानत अली साहब की आवाज में कभी अलविदा ना कहना मूवी से बहुत सुंदर गाना मितवा ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तरीशा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और भाई क्रेजी चीजें हो रही है दुनिया में आप सोचोगे कि जो ऑलरेडी हो चुका है इससे ज्यादा क्रेजी तो क्या ही होगा तो ये हो रहा है भिंडी एक लग्जरी स्नैक की तरह बेचा जा रहा है यूएस में 7200 रुपीस पर केजी कैन यू इमेजिन मतलब भिंडी मेरी तो बहुत ज्यादा ही फेवरेट सब्जी है हर दूसरे दिन अगर मम्मी पूछती थी

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ

0: कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Danisha.
1: अनुज जैन की आवाज में अर्ज किया है ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM दनीशा आपके साथ. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और यार जब डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को भी पता होता है ना कि इस मूवी का चल पाना थोड़ा मुश्किल है एंड और एनीवे धुरंधर ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसको ब्रेक कर पाना किसी भी मूवी के लिए मुश्किल किसी भी मूवी के लिए आसान नहीं है. सो यू नो दे आर ट्राइंग डिफरेंट टैक्टिक्स टू प्रमोट देयर मूवीज. अभी सोशल मीडिया इज द मोस्ट हैंडी टूल टू प्रमोट एनीथिंग एट ऑल राइट. सो अभी क्या वायरल कर दिया है जवानी तो इश्क होना है मूवी के यू नो जो भी पीआर टीम है उन्होंने कि एक बंदे ने पूरा 200 सीट का थिएटर खरीद लिया है यू नो लाइक बुक कर लिया है टू वॉच दैट मूवी विथ हिज फ्रेंड्स. Are you serious? इतने बुरे reviews आए हैं इस movie के. People are not liking it at all. They're like, it's, you know, like the same old thing which has come again in Bollywood. So, कुछ नया नहीं है. और वही off-time comedy and all. और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये fake है. क्या समझते हैं ये हमें? क्यों करते हैं ऐसा? बाकी आप में से किसी ने देखी है जवानी तो इश्क होना है? ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है दिस फ्राइडे जो अभी गया है. तो क्या आपने अपने साथ ये किया कि आप ये मूवी देखने गए? बताएं मुझे आपके क्या रिव्यूज अगर देखी है आपने तो. और सुन रही है रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Dot chal rahe hain.
2: Lame Jams.
1: Ka aaj ka mera lame sawal hai ki park, P-A-R-K, park ko kaun rule karta hai? लेम सवाल है तो लेम जवाब होना चाहिए. आप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड और ऐसा कुछ वॉचमैन ये वाले आंसर्स मत देना, ठीक है? पार्क को कौन रूल करता है? 3311 1063 पर फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. पार्क को कौन रूल करता है? P-A-R-K, पार्क, गार्डन, बगीचा, यस. कौन रूल करता है उसे, ये जानना चाहूंगी. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड. जी बिंदास.

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Geo Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में बड़ा सुंदर गाना जानिब फ्रॉम द मूवी दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड से ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर लेम जैम्स का सवाल मैंने पूछा था कि पार्क को PARK पार्क को कौन रूल करता है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है शायद क्योंकि nobody is able to get the right answer. Let me give you a hint. So इसका जो correct answer है उसमें park word आता है. सोचो जरा. PARK. No, nature is not the correct answer. And yeah, guard uncle is also not the correct answer. बाकी एक ही मुझे सही जवाब आया है अभी तक. बाकियों का मैं इंतजार कर रही हूँ. तो जरा सोचो. Park को PARK को कौन रूल करता है? आंसर में पार्क वर्ड आता है. अब इससे ज्यादा आसान तो मैं और कर ही नहीं सकती थी. इसे फटाफट से बताओ 3311 1063 पर और सुनते रहो रेडियो ऑलिव. बिंदास मेरी जान. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
2: कूल सॉन्ग. ओके रेडी. पुट सम कैच एंड

0: Denisha.
1: हिमेश रेशमिया की आवाज में फिर हेरा फेरी से बहुत ही कमाल गाना, मतलब वाइब भी आ जाती है एकदम से ऐसे वीकेंड वाली. पर वीकेंड तो अभी दूर है, अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है यार. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ. ऑल ऑफ यू जॉट चल रहे हैं अब तो मेरा आज का सवाल लेम जेम्स का था कि पार्क को कौन रूल करता है. PARK पार्क. यस एंड इनिशियली नेचर गार्ड अंकल टाइप्स के आंसर्स आए थे, पर एक दो आंसर्स मुझे करेक्ट ऑलरेडी बीच में आ गए थे. पर जब मैंने हिंट दिया ना कि इसके आंसर में भी पार्क वर्ड आता है, फिर तो जो ऐसे लाइन लगी है भाई एक के बाद एक. सुबीर एंड आसमा संगीता एंड राहुल और आर्काइव, इनका नाम आर्काइव लिखा हुआ है. एंड नीनूज सरताज, अ लॉट ऑफ आंसर्स आर ओवर देयर एंड सबने करेक्ट आंसर दिया है. यस द करेक्ट आंसर इज पार्किंग. सिमरन से जब मैंने बाहर पूछा था तो उन्होंने इतना गंदा रिएक्शन दिया था मुझे, तो मुझे पता था कि आज तो यही सवाल पूछना बनता है. और आपने मेरा साथ दिया, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इसी बात पे. एक बढ़िया गाना आपके लिए, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता. ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है. फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है. इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है. द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन. हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे.

0: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की.
4: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर, दोहा. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक.
3: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक

0: for when we are buying skincare products?
1: So first of it is the harsh soaps, which is normally written as sulfates, sodium lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of good smell, scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
2: इस initiative को शुरू करने का हमारा motive था आपको aware करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पॉन्स ने मेरा दिल जीत लिया है।
3: I think ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है, एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
4: It's very important कि हम पलट के देखें actually, and अपने बच्चों को भी सिखाएं कि whenever they are buying any products, तो वो पलट के देखें। It's a great initiative, Radio Olive. You guys are doing a great job and thank you, Kashish. You guys are rocking it.
2: Next episode में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath suna aapne Diljit Dosanjh ki awaaz mein Charmer. Olive Recharge chal raha hai yahan par, aur waqt ho chuka hai mere jaane ka. Meri jaan, milte hain kal dopahar 2 baje. Aap apna dher sara khayal rakhiyega is garmi ke mausam mein. Stay hydrated, ढेर सारा सनस्क्रीन लगा कर बाहर निकलिए जब भी निकलें, और यू नो लाइट खाना खाएं, अपना ख्याल रखें, और ऑर्डर करते वक्त भी ख्याल रखें कि जब ऑर्डर कर रहे हैं और खाना डिलीवर हो गया है तो जल्द ही खा लें, उसे ज़्यादा देर रख के और फिर बाद में खाएंगे वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. उससे बहुत ज़्यादा स्टमक इशूज़ हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ मेरी जान, ठीक है? अब अपने स्वास्थ्य का जो ख्याल है वो तो हमें खुद ही रखना पड़ता है ना, तो रखिए, ठीक है? और बाकी आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल हम रख रहे हैं बढ़िया गाने प्ले करके. अभी भेज रही हूँ आपके लिए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, ए अजनबी आदित्य रिखारी की आवाज़ में, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.
0: Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
0: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिन ओमरान. सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल. फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा. अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिन ओमरान. वन फैमिली, वन मिशन, अनस्टॉपेबल.

सुनों के कहोगे ये लड़की है वाव, तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंद।

जैसे ये मरजामा वर्ड गाने में यूज किया गया ना, पंजाबियों का तरीका होता है अलग अलग इमोशंस के साथ इस वर्ड को कहने का। जब वो एकदम इसे सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं हाय मैं मर जा, ओके ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है हाय मैं मर जा, ठीक है। और प्यार में भी बोलेंगे ओए होए हाय मैं मर जा, ठीक है। सो एक ही लाइन को कहने के तरीके होते हैं। सोचो अगर बेचारे किसी अंग्रेज बंदे को पंजाबी सिखानी पड़ जाए, अब उनको कैसे समझाएंगे कि भाई वर्ड तो ये लाइन तो एक ही है लेकिन इसमें एक्सप्रेशन आपको अलग अलग तरीके से यूज करने हैं। 5:06:15 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। मैं क्या जी सुने हो, कितना देखिए हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन गौर है तुम्हारे नाल, ठीक हो। गर्मी में कैसा निकला आज का दिन? एंड आई एम श्योर आपका दिन एकदम बढ़िया वाला रहा होगा। लेकिन अगर आज दिन बढ़िया नहीं भी रहा तो कोई टेंशन नहीं है, सारे दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं। बिल्कुल हुलारे जेड़ा मारदा हैगा, ए जबरदस्त इवनिंग का टाइम शुरू हो चुका है, उन 4 घंटे अपने ही है। साथ ही रहना, आपको जो काम करना करिए, आप गाड़ी में सुनिए, घर पे सुनिए, एप्लीकेशन के थ्रू सुनिए, बट सुनिए जरूर। अपना दिन बताने के लिए आज का और गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए 3311063 पे व्हाट्सएप कर दो यार।

देखो यार, ये जो है ना म्यूजिक के बाद मेरा आना आपके लिए, एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मुझे बात भी करना, और मैं गाने में जो थी वो बहुत सारा खो गई थी। अभी फिलहाल आपके लिए एक नंबर गाने तो चल ही रहे हैं, अंगड़ाई वाला गाना चल के हटा है, खुलारे वाला गाना बस ऑन योर वे।

ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਆਜ ਮੈਂ ਸੁਬਹੇ ਸੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਆਪ अरोरा जो है वो देख पाएंगे, नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखने वाली है। सो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि कहाँ कहाँ पे ये इंडिया में दिख सकती है। हो सकता है ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह में यहाँ पर दिखाई दे, जहाँ पर हम इतने यू नो पैसे देकर, इतने लाखों देकर लोग जो है नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर ब्राइट अरोराज जो है वो आज इंडिया में दिखाई दे सकते हैं। सो या मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, तो जो इंडिया वाले हैं अगर वो देख पाए तो यही पे ट्रिप हो जानी है आपकी।

0: सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जी ओम विंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 rials ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है, तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए सर्टिफाइड बनिए सर्टिफाइड के साथ बनिए
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: This hour is brought to you by...
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

कुर्बान भाई ने पूरा जोर लगा दिया बाकी यार 5:33:40 स्टूडियो की घड़ी पे सोने की तरह की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ यार ये गाना काफी ज्यादा अंडर

अलका याग्निक ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गा दिया और उसके साथ साथ नौटंकी साला से दे देते और सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं हम। अभी फिलहाल के लिए बेइज्जती आपकी तब हो जाएगी जब आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सही है। आप हाफ इन्फॉर्मेशन ना जो है ना वो हमेशा खतरनाक होती है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। सो ऐसे टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है ओ माई गॉड अगर इसको अपलोड करने से मुझे अच्छे व्यूज मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या आप वर्बलाइज कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, सो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बोला कि भाई जो वेरीफाइड न्यूज नहीं है उसको आप अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हो और बाद में वो गलत निकली तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो मैंने सोचा आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार है यार। सुंदर हो रेडियो ऑलिव करके इधर जी अविंदास, रेडियो ऑलिव आपको जो भी बताता है ना वो सही बताता है, तो हम पे भरोसा रखिए।

बस सॉरी काफी नहीं होती है, रियलाइज करना चेहरे पे वो बात होनी चाहिए कि हाँ आप सॉरी हो। सॉरी बोलना बहुत जहर लगता है, कई लोग सॉरी जो है वो बोलते ही नहीं है, उसमें से मेरा एक्स भी था, वो सॉरी कभी नहीं बोलता था, भाई भाई अलग लेवल का इंसान था। खैर मैं आपकी बात करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब हमारी फैमिली में या मम्मा ने, हमारे मॉम डैड ने ऐसे रेज किया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी गलती, आप सॉरी बोल दो यार, और थैंक यू बोलना भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मेरी मम्मी ना, मेरी मम्मी के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई कुछ कर रहा है या हम कर रहे हैं, वो बहुत बार थैंक यू बोलती थी यार, और सॉरी तो हम सबके मुँह पे है कि यार अगर गलती की है तो सॉरी बोलिए, लेकिन कुछ लोग कैसे बोलते सॉरी बोलते हैं, सॉरी लाइक दे डोंट मीन, जब आप सॉरी बोल रहे हो तो भाई दिल से बोलो।

इस लम्हे में टेम्परेचर की तरह चेक कर ले। मौसम डिग्री अब तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम है 33 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी है 12% एंड विंड जो है 20 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ये है मौसम के हाल। लेकिन अगर आप अपने हाल सही रखना चाहते हो, हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पीते रहिए एंड शांत रहो यार, थोड़े ठंडे रहा करो, दिमाग को ठंडा रखा करो। 2 और गो।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive, 106.3 Radio Olive. Jio Bindaas. Aapka apna ghar, best seat for FIFA World Cup 2026. Dot par Talabat Pro ke saath dekhe har match live. Sirf 360 Riyal instead of 849 Riyal. Offer limited hai, toh abhi subscribe kare. Terms and conditions apply.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

हमेशा मुझे वीकेंड वाली फील देता है. लेकिन इट्स मंडे, उस दिन नहीं है. और मैं ऑफिस में भी बात कर रही थी यार, मतलब आज मंडे ही है क्या? और कल भी मैं यही बात कर रही थी, आज संडे ही है क्या? 6:06, 50 सेकंड इन स्टूडियो की घड़ी पे. इंडिया के एक आइसक्रीम पार्लर ने एक ऐसी आइसक्रीम की फ्लेवर को लॉन्च किया है जो मैं सुन के मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपको सुन के अजीब लगेगा. क्या आप उस अजीब आइसक्रीम को खाना चाहेंगे? सो ये आइसक्रीम की फ्लेवर है बिरयानी फ्लेवर. यस, जो कि बिरयानी की तरह टेस्ट करती है. लाइक क्यों वाई कपनी टिक्के वाली आइसक्रीम भी बना दो यार, पिज्जा वाली आइसक्रीम भी बना दो यार, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं ये जो बिरयानी फ्लेवर वाली आइसक्रीम को टेस्ट करना चाहेंगे? आपका क्या कहना है इसके बारे में? बन जाइए रिपोर्टर और बताइए मुझे 3311063 पर. सुंदरी रेडियो ऑलिव के जरिए जियो मिंदर. बिरयानी आइसक्रीम, लाइक सीरियसली, चिकन के टुकड़े भी डाल दो उसके अंदर, कच्च कच्च करके खा जाना.

0: seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Socho, agar saving se aap ban jao millionaire, Commercial Bank ke Save and Win campaign mein bhaag lijiye.
2: Har 10,000 Qatari Riyal saving growth pe milega ek coupon. Ya sirf 50% salary save karo and enter the draw.
1: New customer ho, to account kholo aur first salary transfer pe guaranteed chance to win.
2: Aur 9 mahine ki consistent salary transfer ke saath mega draw mein entry pakki.
1: To phir sochna kya? Agle millionaire aap ho sakte ho. Aaj hi shuru karo savings. Commercial Bank. Save and win.
3: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
5: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
6: I'm in number one. Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ.
10: This hour is brought to you by
11: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बिल्कुल कुड़ी सैटरडे सैटरडे जैसे बोल रहे हैं ना सैटरडे ऐसे करके स्टाइल में, लेकिन हम पंजाबी लोग हैं, जब पंजाबी लोग अपने तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं आप सैटरडे कर देने हमने, ठीक है। 6:17:37 स्टूडियो में खड़ी दोगे और बात कर रहे हैं। इंडिया की एक आइसक्रीम पार्लर ने एक नया फ्लेवर जो है वो आइसक्रीम का लॉन्च किया है, जिसका फ्लेवर है बिरयानी आइसक्रीम। ओ माई गॉड। सो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ये बिरयानी आइसक्रीम ट्राई करना चाहेंगे?
1: Hello, good evening, Radio Olive. This is Saida. Biryani ice cream, that's too much of experimenting. Nah. बिरयानी तो बिरयानी ही ठीक है, उसे आइसक्रीम ना बनाए प्लीज।
0: मेरा भी यही कहना है, मेरे भी यही जज्बात हैं। तो आप में से जितने भी बिरयानी लवर अभी मुझे सुन रहे हैं, क्या आप ये बिरयानी अपनी आइसक्रीम में खाना चाहेंगे? बिरयानी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ओह माय गॉड, सोच के कुछ अलग सा हो रहा है। और जो मेरी फ्रीजर में पड़ी है ना शुगर फ्री हेजल नट आइसक्रीम, मैं उसको अब बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ यार। सो बताइए आप ये ट्राई करना चाहेंगे 3311063 पे वॉइस नोट भेजो यार।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तालाबाद प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
2: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive, 106.3 Radio Olive, Gio Bindas. The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडो ऐप पर। Experience more with ओरिडो।
4: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: This hour is brought to you by...
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: On the number one, Radio Olive.
8: Olive Sonor Radio Network. Qatar's number one, Asian Radio Network.

बाहर के मौसम के हिसाब से गाना चलाऊं। बैंड बजी हुई है सबकी, लेकिन चाय हम नहीं छोड़ेंगे यार। ये बात कतर की बेस्ट लगती है भाई, जो चाय लवर है कड़क पीते हुए मिलेंगे 50 की गर्मी में भी। ये जो स्कल इमोजी होती है जो जेंजी इसको यूज करते हैं, उसका मतलब भूत नहीं होता है। स्कल इमोजी का मतलब जो है वो ये होता है लाइक आई एम डाइंग, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा भसड़ मच गई है, कुछ ऐसा भयंकर हो गया, तो आप स्कल इमोजी जो है वो भेजते हैं। सो उसका मतलब वो होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जेंजी से चैट कर रहे हैं, अगर वो आपको ये भेजे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पे पहुंचना है, वहां पे भूत आ गया है या वो भूत बन गया है। सो या इट्स लाइक आई एम डाइंग, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस वो इमोजी आप भेज दीजिए। जेंजी डिकोडिंग में हमने किया आज इसको डिकोड। और बोलो क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो, ऑफिस निपट गया ना, ज्यादा देर तक मत बैठा करो यार, निकल रिया करो, फन किया करो, ताकि आपको जबरदस्त इवनिंग्स अपनी गाड़ी में बैठ के सुनने का मजा आए। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, करके दे रहो जियो बिंदास।

0: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ये गाना आपको फील देगा। अगर आपका दिल ऊपर से टूटा हुआ है, ओए होए होए, मजे आ जाएंगे। और ये गाना बोनस की तरह काम करेगा। तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया, तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया। एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं। मैं क्या जी सोने हो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे ना, चाहिए चाय गर्मी जितनी मर्जी हो जाए, जो टी लवर्स है ना भाई, उन्होंने चाय पीनी पीनी है। सो ऐसे टाइम पे मैं आप लोगों की चाहती हूँ कि हेल्थ जो है ना वो बढ़िया रहे। आप थोड़ा सा अपना चाय पीते हुए ध्यान रखिए। ये पेपर कप्स जो है ना, रिसेंटली मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि ये जो पेपर कप्स हैं उसमें जब आप चाय पीते हो ना, तो इट्स नॉट गुड। ओके, इसमें हाई हीट की वजह से जो कप का इनर प्लास्टिक और वैक्स लाइनिंग जो भी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि आप चाय के साथ पीते हो। सो ट्राई करो कि चाय पीने का शौक सबको है, बट जो सेरेमिक मग्स होते हैं, ग्लास कप्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील्स होते हैं, ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया। टम्बलर्स हो गए है ना, ट्रैवल मग्स हो गए, अब अपनी गाड़ी में रखिए, अपने पास में रखिए, जब भी आप चाय डलवा लें उतनी चाय डलवा लीजिए और उसी में आप चाय पीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चाय का स्वाद हेल्थ के साथ साथ मतलब सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ना यार। सुंदर रेडियो ऑलिव गोर के दरो जियो बिंदास।

0: Seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million Rials cash prizes.
3: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 Rials growth par paiye ek coupon.
2: Dusra, agar salary 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi, I'm Divya Datta. And you're listening to Radio Olive Jio Bindas.
6: I'm the number one, Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ.
10: This hour is brought to you by
11: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

भाई साहब, व्हाट अ ट्रैक यार, सोनू निगम ने बवाल काट दिया यार इसमें। 7:20 और जब बात मोहब्बत की आती है,

0: इवनिंग को और भी शॉर्ट करते हुए और भी एनर्जेटिक बनाते हुए और एनर्जी तब आती है जब आपको कोई गिफ्ट देता है, और गिफ्ट जब आप अपने किसी समवन स्पेशल को ही गिफ्ट करते हो, राइट? ऐसे तो गिफ्ट नहीं करते हो. और तो जब आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसा गिफ्ट करो जो कि बढ़िया हो और इन्वेस्टमेंट भी हो सामने वाले की, और बढ़िया लगे. मतलब दिखता है जब आपको कोई गोल्ड या डायमंड गिफ्ट करता है तो आप उसके लिए कितने खास हो. मैं ये नहीं कहती कि कोई खास नहीं अगर वो नहीं कर रहा है तो, बट या अगर आप कर रहे हो गिफ्ट चूज किसी के लिए, सो बराबर गोल्ड एंड डायमंड्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आप जो है उनके बढ़िया बढ़िया डिजाइन देखिए और ज्वेलरी खरीदिए. बट अगर आपके पास ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी पड़ी है एक्सचेंज करवा लीजिए, बस आपको मेकिंग चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे एंड दैट्स इट, गुड टू गो. और उसके साथ साथ इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप जो है अप टू 15% गोल्ड प्राइजेस पर यहां पर सेव कर सकते हो. सो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम विजिट करिए और अपने समवन स्पेशल को स्पेशल फील कराइए.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तालाबाद प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

तरीके से सामने वाले को चलाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं। देखो, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना जीने का, खाने का, रहने का, काम करने का, सबका अपना अपना तरीका है। तो कभी भी किसी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं, ठीक है, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, जो दूसरों की आदतें हैं वो दूसरों के हिसाब से। इसीलिए देखो, अपनी लाइफ पे आपका अपना हक है, दूसरों की लाइफ पे आपका कोई हक नहीं।

0: know, right?
1: सुमरन दीदी, अगर आप इतने अच्छे गाने चलाओगे तो हमारा डांस ही निकल जाएगा।
0: तो डांस निकलने दो ना बेटा।

ਤੋੜੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ ਚਲੋ ਖੇਲਦੇ ਹੈ देखिए दोस्त अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अब्बी के अब्बी मतलब आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे अपना नाम लिख के भेजो मैं आपका नाम अब्बी के अब्बी लिख के बोल दूं यहां पर तो आपको मुझे लिख के अपना नाम भेजना होगा मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ 3311063 जी हाँ 3311063 इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिए चलिए अब मैं आम नाम पढ़ने जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ जुनेद शिव रियाज फारा चांद रिफत रिफत हमेशा लिखती हैं हेलो सिमरन बेस्ट आर जे बढ़िया बड़ा अच्छा लगता है यार रबानी शिवा मकसूद दानिश जुल्फिकार भूपेंद्र फवस जुनैद रियाज बलोच मोहम्मद यूसुफ अमर थापा जी सूरज जी थैंक यू सो मच रिहाना जी सबीना जी क्रिस भूपिंदर थैंक यू सो मच आपके जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए टीके जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए जिनका नाम मैं बोल दूं यार वो बार बार नाम ना लिखो कंफ्यूज हो जाती बेचारे दूसरे रह जाते यार तौकीर जी थैंक यू सो मच अमर जी थैंक यू सो मच अजरुद्दीन जी थैंक यू सो मच नबील कुरैशी जी थैंक यू सो मच नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया एरन जी थैंक यू सो मच सुमोन जी थैंक यू सो मच फटाफट से सिर्फ और सिर्फ नाम दोस्त कोई मैसेज मत लिखो यार सीमा जी थैंक यू सो मच सीवा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए वसीफ जी मोहम्मद अली जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए मलिका जी थैंक यू सो मच तनवीर जी थैंक यू सो मच खान साहब थैंक यू सो मच अब आप लोग अभी थैंक यू मत लिखो यार मैं मौका दूंगी आपको लिखने का कहीं नहीं जा रहे आप लोग ताहिर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए न्याज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए एंड दैट्स इट फॉर नाउ जिन जिन लोगों के नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिखिए और बना दीजिए अपना फेवरेट वाला कोई भी इमोजी साथ में भेज दीजिए

0: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रांच। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम ब्रांच। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर, ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
2: हाय एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर अफसल, नसीम हेल्थकेयर। पीपल आर ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट व्हेन द टूथ टू गेट फिल्ड एंड हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स दैट द टूथ नीड्स टू बी फिल्ड। या इफ यू कैन मेक आउट ब्राउन डिस्कलरेशन और ब्लैक डिस्कलरेशन और ए चॉकी व्हाइट अपीयरेंस ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ, जस्ट इमीडिएटली कंसल्ट योर डेंटिस्ट एंड गेट द रिक्वायर्ड टूथ और टीथ टू गेट फिल्ड। Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
1: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
4: जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
1: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: मिल जाए तो कहना, पता क्या कहना, किद्दा जी की हाल चाल। हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त इवनिंग्स में सिमरन के साथ हैं आप एंड हम खेलने वाले हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
0: बहुत बढ़िया। सो आज कल काफी ज्यादा टफ हो गया था आप लोगों के लिए, आज मैंने थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है और ये एक चुटकी सॉन्ग जो है वो सिर्फ एक ही सेकंड का सॉन्ग है जो कि आपने सुनना है और मुझे बताना है ये कौन सा गाना है। बस एक बार और बताओ ये कौन सा गाना है, एक चुटकी सॉन्ग वाला। सो आपको वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है डार्लिंग, प्लीज मुझे लिख के मत भेजना, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ यार। सो वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए और बताइए गाना कौन सा गाना, गाना चाहे तो भी चलेगा, नहीं गाना है बताना चाहे तो बता दीजिए। 3311106 पर इंतजार कर रही हूँ आने वाले गाना।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਊਟ ਹੋ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਤਾ ਔਰ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको एक चुटकी ये सॉन्ग सुनाया था और आप लोगों के जवाब सुनते हैं.
3: Hey Simran,
0: hi,
3: how are you?
0: I'm good.
3: Good evening.
0: Very good evening.
3: This song is a jingat from Dharak One.
0: Okay. Thank you.
4: Hi Simran.
0: Hi.
4: This is Vandana Raj. और वो एक चुटकी सॉन्ग था जिंग जिंग जिंग जिंग जिंगट जिंग जिंग जिंग जिंग जिंगट मुझे पूरे लिरिक्स नहीं मालूम है
0: क्यूट
4: पर जिंगट सॉन्ग था.
0: ओके
4: जियो बिंदास.
0: जियो बिंदास डार्लिंग.
3: हाय सिमरन.
0: हाय
3: दिन दिन दिना फ्रॉम सड़क
0: सड़क नहीं धड़क हो गया बेबी और सिंगट सिंगट का आप लोग ना सच्ची में बड़े क्यूट हो यार. बड़ा बधाइयां मिठाइयां ने बहुत सारे बढ़ा गए. आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं और जिस तरह से आप लोगों के वॉइस नोट्स मुझे खुश करते हैं और जिस तरीके से आप लोग भेजते हो और इतने प्यार से आप सुनते हो और आप हमें मिस भी करते हो यार.
5: ऑलिव रेडियो नमस्कार.
0: नमस्कार.
5: मैं विलियम बात कर रहा हूँ. सिमरन जी आपको बहुत बहुत मैं मिस किया है. मैं गोवा में था. अभी आया है. आपका वॉइस सुन के बहुत अच्छा लगता है. आपका म्यूजिक बहुत प्यारा आप बजाती है. सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है. आपका म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है.
0: मुझे भी.
5: जियो बिंदास.
0: जियो बिंदास हो गया. फिर उन्होंने एक और भेजा.
6: ऑलिव रेडियो नमस्कार. नमस्कार सिमरन जी.
0: हाँ जी.
6: आपका वॉइस आपका म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा लगता है. आपका प्यारा सा वॉइस
0: अरे
6: पूरा दोहा हिलाता है. और आपका म्यूजिक अपना.
0: थैंक यू सो मच विलियम जी. बड़ा अच्छा लगा आप जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे. तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आप मुझे सुनते हो मुझे पता है और जो आपके दिल में है वो बता दिया करो ऐसे विलियम जी की तरह. मुझे भी अच्छा लगता है यार.

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
0: Radio Olive, your happiness frequency.

0: इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आस्ट मेडिकल सेंटर दोहा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक।
1: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
2: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of good smell, scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
1: इस initiative को शुरू करने का हमारा motive था आपको aware करना. लेकिन आप सबके amazing response ने मेरा दिल जीत लिया है.
3: I think ये segment मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है. एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखें। सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।
5: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कहेंगी यार मैं 5 बजे आऊंगी जबरदस्त इवनिंग्स लेके, आज के 4 घंटे फिनिश हो चुके हैं, अगले 2 घंटे जो है वो आप मिडनाइट लाउंज को दीजिए। सो अभी के लिए खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बैठने वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah,

Good evening, Qatar. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. Aaj raat ek choti si confession karte hain. Hum sab actors hain, hai na? मतलब फिल्म वाले एक्टर्स नहीं, रियल लाइफ वाले एक्टर्स. क्योंकि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर सीक्रेटली बहुत फ़र्क पड़ता है. किसी ने आपको मैसेज इग्नोर कर दिया, इतना फ़र्क पड़ता है कि क्या ही बताऊँ. ऑफिस में किसी और को अप्रिसिएशन मिल गया, फ़र्क नहीं पड़ता. पर किसी दोस्त ने बिना बताए प्लान बना लिया, फ़र्क पड़ता है. सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ आपसे बेटर लग रही है आपको, तो फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन सच क्या है? फ़र्क पड़ता है. और शायद उसमें कोई बुराई भी नहीं है यार. मतलब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए भाई, उससे बिलोंगिंग्स भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए. और हम सब चाहते हैं कि कोई हमें देखे, समझे और अप्रिशिएट करे. प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें हाइड करना शुरू कर देते हैं. स्ट्रांग बनना और नम बनना, दोनों में ना अलग चीज़ें हैं. तो आज रात एक सवाल है आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप हमेशा कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल के किसी कोने में जब आज भी आपको लगता है कि आप फ़र्क तो पड़ता है. मैसेज कीजिए 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑर्डर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज. सो कभी कभी जिंदगी बदलने में साल नहीं लगते, बस दो मिनट लगते हैं. एक फोन कॉल, कोई एक इंटरव्यू, कोई एक मैसेज, बस कोई एक हाँ और फिर एक ना. हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ के बड़े चेंजेस बड़े डिसीजन से आते हैं, लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि कहानी किसी बहुत बड़े दिन से नहीं, एक छोटे से मोमेंट से बदली थी. शायद किसी ने हिम्मत करके एप्लीकेशन भेजी थी, शायद किसी ने एक सिटी छोड़ दी थी, शायद किसी ने इंसान को किसी को माफ़ कर दिया था और उसके बाद पूरे डायरेक्शन ही बदल गई. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त हमने कभी बस सोचा नहीं, हमें पता नहीं होता कि ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. उस वक्त तो वो एक नॉर्मल यू नो दिन लगता है, जैसे कि आज का दिन है. बस बाद में समझ आता है कि कहानी यहीं से बदली थी. तो आज रात का सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा यू नो टाइम था, वो कौन से दो मिनट थे जिसने यू नो आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आए. 3311063 इज़ माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Midnight Lounge.
1: ये है Midnight Lounge. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर मनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल. फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा. अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

हेलो, यू नो एक रेस चल रही है और हम सब भाग रहे हैं, पर कहाँ? यू नो सवाल यही है कि कोई प्रमोशन के पीछे, कोई यू नो मनी के पीछे, कोई फॉलोअर्स के पीछे, कोई रिकॉग्नाइजेशन के पीछे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक कर सोचें तो शायद हम एक्चुअली जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी चेज कर रहे हैं, हम सक्सेस नहीं चेज कर रहे हैं, हम वैलिडेशन चेज कर रहे हैं, हम बिजी नहीं हैं, पर हम डर से भाग रहे हैं। और ये भाग जितनी सिंपल लगती है ना, ये मुझे लगता है उतनी है नहीं, क्योंकि बात बार बार उसी बात पर आ जाती है कि पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जिसका नाम भी हमें नहीं पता। तो आज यही बात करते हैं कि खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो उसके पीछे का असली जो रीज़न है वो क्या है। कोई फ्रीडम, कोई फैमिली, कोई मनी, या फिर बस सुकून। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

जैसे हम सुनते हैं कि लाइफ अपग्रेड हो रही है, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नई गाड़ी, बड़ा घर, बेटर सैलरी और मे बी लेटेस्ट फोन। लेकिन जिंदगी के सबसे पावरफुल अपग्रेड्स अक्सर ना Amazon पर नहीं मिलते या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर पर या किसी शॉपिंग से नहीं मिलते। कुछ लोगों की लाइफ तो बेटर हुई जब उन्होंने रात को टाइम पर सोना शुरू किया। कुछ लोगों की बात तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बना लिया। कुछ लोगों की तब जब उन्होंने हर बात का जवाब देना बंद कर दिया, और कुछ लोगों की तब जब उन्होंने खुद को कंपेयर करना छोड़ दिया। अजीब बात यह है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया ऐड नहीं करना होता, बस कुछ चीजें हटानी होती हैं, अनलर्निंग जिसे कहते हैं। और ये मैंने एक्चुअली कतर आके ही सीखा है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि यार आता है सब कुछ, हो जाएगा मैनेज, पर पता चला कि आता तो है बट कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अनलर्न करनी थी, वो की मैंने। तो आज रात का सवाल आपसे भी यही है कि आपकी लाइफ का सबसे अंडररेटेड अपग्रेड कौन सा है, कौन सी छोटी सी हैबिट या डिसीजन जिसने सब कुछ बेटर बना दिया। 3311063 इज माय व्हाट्सएप नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो एवरी डे आई ट्राई टू टॉक अबाउट वन बुक. मुझे ऐसा लगता है कि हम सब किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कई सारे नए वर्ड सीखते हैं. लोग किताबें पढ़ते ही इसलिए हैं सो दैट वो नई चीज़ें सीख सकें. सो आज ऐसी एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेंस सर्च फॉर मीनिंग. इस किताब के ऑथर जो हैं विक्टर एक साइकेट्रिस्ट थे. उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल वक्त को देखा था उनके हिसाब से, लेकिन उस सब के बीच उन्होंने एक बात समझी कि इंसान मुश्किलों से नहीं टूटता, मीनिंग के बिना टूट जाता है. अगर कोई मतलब नहीं है ना इस दुनिया में तो टूट जाता है. जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है तो मुश्किलें भी झेल जाते हैं, और जब मतलब खो जाता है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लग जाती है. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Midnight Lounge. शायद इसीलिए कुछ लोग सेम सिचुएशन में भी होपफुल रहते हैं और कुछ लोग सेम सिचुएशन में बहुत थक जाते हैं. तो आज का सवाल भी आपसे यही है कि आपको सुबह उठकर मेहनत करने की वजह क्या मिलती है, आपको क्या लगता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आप ये दिन शुरू करना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ. आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आपको पता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन यू एवर मेट वो जरूरी नहीं है कि बहुत फेमस कोई सेलिब्रिटी हो तभी इंटरेस्टिंग हो. कभी कभी आपकी एक राइड में आपको कोई यू नो टैक्सी ड्राइवर ऐसा मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कभी कोई यू नो कड़क चाय आप पीने गए और आपको कोई अनजान व्यक्ति मिल गया जो बहुत ही अच्छा है. कभी कोई स्कूल टीचर, कभी इम्पोर्टेंट कोई पर्सन आपको एयरपोर्ट पर मिला और कोई मतलब बहुत ही स्ट्रेंजर और उसके बाद आपकी दोस्ती हो गई. और अजीब बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं लेकिन सालों तक ना याद रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कोई लाइन बोली होती है, कोई पर्सपेक्टिव दिया होता है, कोई या फिर सिर्फ एक काइंडनेस दिखाई होती है जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई कैरेक्टर तो ज़रूर होता है जो ऑफिशियली इम्पॉर्टेंट नहीं था लेकिन कहानी में बहुत इम्पॉर्टेंट निकला. तो आज रात का सवाल भी आपसे यही है कि आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आपको कौन सा लगा पिछले कुछ दिनों में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और बताइए कि उस इंसान ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आपको लगा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है. 3311 1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Midnight Lounge.
1: Hi everyone, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की.
2: Hi everyone, I am Dr. Anila, specialist dermatologist, Aster Medical Center, Doha. Of course, everybody has to look at the contents, which is written very clearly at the back.
3: So what are the key red flags that we should look for when we are buying skin care products?
2: So first of it is the harsh soaps, which is normally written as sulfate, sodium lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of good smell, scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is
1: इस इनिशिएटिव को शुरू करने का हमारा मोटिव था आपको अवेयर करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पांस ने मेरा दिल जीत लिया है.
4: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है, एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है.
5: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखे. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट.
1: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट.
6: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार.
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

यू नो, जब हम किसी नई जगह पर मूव करते हैं, जैसे कि जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर आई थी, तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं, नई जॉब, नई जगह, नए लोग, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता, मतलब कोई अकेलेपन के लिए प्रिपेयर नहीं करता। किसी को लोनलीनेस बहुत डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है, किसी को यू नो फेस्टिवल्स याद आने लग जाते हैं, किसी को फैमिली इमरजेंसीज में दूर रहना पड़ता है, किसी को दोस्त बनाने पड़ते हैं जो कि मिल नहीं रहे होते हैं, और किसी को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लाइफ अब वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हम एडजस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है किसी एक से दोस्ती करने में, और फिर एकदम से ऐसा होता है कि यार अब अगर ये कहीं चली गई या ये कहीं चला गया तो लाइफ फिर से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, एडजस्ट करना फिर से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ऐसे में फिर समझ में आता है कि यार अब फिर से नई चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक नया वर्जन फिर हम क्रिएट करते हैं। तो आज मेरा सवाल भी आपसे यही है काता डायरीज़ में, कि जब आप पहली बार घर से दूर आए थे तब सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ आपको क्या लगी थी, क्या आपने उससे यू नो हैंडल कर लिया था और कैसे हैंडल किया था। 3311106 इज माई नंबर। आपको इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉइस नोट भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 3311106। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आज की रात को भी किताब समझते हैं और आप उस किताब के मेन कैरेक्टर हैं। अब सोचिए कि अगर आज का दिन एक चैप्टर होता तो उस चैप्टर का टाइटल क्या होता? स्टिल वेटिंग, स्मॉल विक्ट्रीज, ट्राइंग अगेन, या फिर लर्निंग टू लेट गो, वन स्टेप क्लोजर, और शायद नॉट माय बेस्ट डे बट आई शोड अप। पर मुझे लगता है कि हम सब अपनी जिंदगी को पूरी किताब की तरह देखते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं, लेकिन जिंदगी चैप्टर बाय चैप्टर जी जाती है तो शायद थोड़ी आसान लगने लग जाती है। सो क्योंकि हर चैप्टर परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर चैप्टर ज़रूरी होता है, तो आज रात जाने से पहले बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर आज के दिन को आपको कोई टाइटल देना हो तो याद रखिएगा कि आपने कुछ तो ट्राई किया है और मेहनत तो की है, बस उस मेहनत को रंग लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो उस टाइम को दीजिए और बस अपना ख्याल रखिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You are listening to this is you are listening to Radio Olive 106.3 FM.
4: Hi everyone, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले 2 दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की.
5: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर दोहा. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक.
6: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
5: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of food smell scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
4: इस इनिशिएटिव को शुरू करने का हमारा मोटिव था आपको अवेयर करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पॉन्स ने मेरा दिल जीत लिया है.
7: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है. एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है.
8: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स तो वो पलट के देखें. सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट.
4: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive.
1: Chandni

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय
0: लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive,

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।